हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि। तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा यहीं आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 MHz पर सुबह के 6 बजे हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना।

हमारे देश में भारतीय संस्कृति, परंपराएं और नैतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है। हमारे देश में अपार संसाधनों का भंडार है। अपार संसाधनों से समृद्ध है भारत देश। यहाँ विविधता और एकता की मिश्रणबद्धता देखने को मिलती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र आश्चर्यजनक है। प्रथम वंदन देश की माटी को शत शत नमन, शत शत नमन।

अपनी मिट्टी से प्रेम करना, यही तो भक्ति है। ये शरीर क्या है, एक माटी ही तो है। सेवा करना या भजना, यही तो भक्ति का सरल मार्ग है। ईश्वर या अपने आराध्य के प्रति अनन्य श्रद्धा युक्त और निष्काम प्रेम या पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। ये ज्ञान और कर्म से परे हृदय की शुद्ध भावना है, जहाँ अहंकार का नाश होता है। भजन और सत्संग ही सच्चे और आनंदित जीवन का आधार है। भजन प्रभु से लगन लगाता है, प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है। वहीं सत्संग हमें

विचार, शांति और जीने की कला सिखाता है। इन दोनों के जीवन में गहरे प्रभाव मानव को मानव बना जाते हैं। इसका महत्व इतना निर्मल है, संक्षेप में कहा जाए, भजन प्रभु का सुमरण है, ईश्वर की स्तुति है, उनका स्मरण करने से मन को शांति मिलती है, यह हमें भजन बताते हैं। यह हमारे अहंकार और अहंकार के निष्कर्ष को पिघलाकर चित्त को निर्मल करता है। सत्संग अच्छे विचारों की संगति है। संतों के संपर्क में आकर अच्छे विचार अपने आप आने लगते हैं। अच्छे विचारों के संपर्क में रहने से विवेक जागृत होता है। ये जीवन की उलझन को सुलझाने और सही दिशा चुनने में मदद करता है। जीवन का आनंद जब भजन ही भजन हो, भजन की भक्ति और सत्संग का ज्ञान मिल जाता है, तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती और हर पल आनंद ही आनंद का अनुभव होता है।

जब कोई व्यक्ति मन और हृदय से ध्यान करता है, वाणी भजन और प्रार्थना करने लगती है और हमारा कर्म सेवा पर आधारित हो जाए, अपने आराध्य से हम कब जुड़ते जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो उसे वास्तविक भक्ति कहते हैं। ध्यान, भजन, प्रार्थना, सेवा, यही तो है भक्ति। ईश्वर के प्रति अनन्य, निस्वार्थ और सच्चा प्रेम, समर्पण ही तो भक्ति है। ये वो अवस्था है जहाँ साधक अपने आराध्य से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ता है। प्रभु की वंदना करना ही चाहिए, मन में उनका नाम निरंतर चलते रहना चाहिए। सुमिरन, ईश्वर का स्मरण और ध्यान मन को शांत करने, मानसिक तनाव कम करने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये केवल मंत्रों का जाप नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को और जागरूक करना है। जागरूकता को हर पल महसूस करने की प्रक्रिया है भक्ति, ये साधना का प्रतिफल है। सुमिरन जीवन की भागदौड़ और तनाव से मुक्ति दिलाकर मन को एकाग्र करता है। सुमिरन से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर पाता है कि मैंने अंदर ही अंदर उसे पा लिया, भीतर ही भीतर उसे पा लिया। सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर लेना ही भक्ति है, यही तो साधना। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति और धैर्य बढ़ते जाता है।

मानव हृदय को कोमल करती है, सरल बनाती है। इससे मनुष्य में विनम्रता और परोपकार की भावना जागृत होती है। भगवत भक्ति सांसारिक चिंताओं, भय और मानसिक पीड़ाओं को दूर करती है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सहज ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। पराशक्ति और उनके भक्तों के बीच का संबंध केवल पूजा का नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का होता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी भाव निस्वार्थ प्रेम और शुद्ध हृदय है। आइए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं, वंदना करते हैं।

जीवन की भागदौड़ में जहाँ तनाव बढ़ता है, वहीं भक्ति मानसिक स्थिरता और गहरी संतुष्टि प्रदान करती है। ज्ञान और योग से कठिन मार्गों की तुलना में भक्ति मार्ग सबसे सुलभ है। इसे कोई भी व्यक्ति प्रेमपूर्वक स्मरण, कीर्तन और सत्संग के माध्यम से अपना सकता है।

जीवन में भक्ति का सीधा अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास है। ये मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है, जीवन को सकारात्मक दिशा भी देता है और विकारों को जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, माया से मुक्ति मिलता है।

पूर्ण समर्पण भक्ति का पहला कदम है। अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर परमात्मा के विधान को सहर्ष स्वीकार करना उनसे निर्मल प्रेम है। सांसारिक मोहमाया और स्वार्थ से परे केवल ईश्वर के प्रति असीम लगाव ही भक्ति है। इसी बात के साथ आज की वंदना यहीं समाप्त होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर केंद्रित कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की संगीतमयी प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति लता मंगेशकर के स्वर में।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुना। आज की प्रस्तुति लता मंगेशकर के स्वर में थी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है संसार। वाचक शैलेंद्र जोगी हैं, आलेख रमेश कुमार क्षत्रिय का।
1: इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सामान्यतः 50 वर्ष के बाद व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण उभरने लगते हैं, क्योंकि इस आयु में शारीरिक क्षमताओं, मसलन पाचन क्रिया का कमजोर होना, हड्डियों में लचकपन कम होकर उनमें क्षरण होना और आंख, कान आदि इंद्रियों की कार्यक्षमता भी कम होने लगती है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और नीरसता प्रारंभ हो जाती है। अक्सर लोग वृद्धावस्था के दस्तक देते ही घबराने लगते हैं।

0: उन्हें एक अजीब सा भय और बेचैनी घेर लेती है, जबकि वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का एक आवश्यक पड़ाव है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की मानसिक चेतना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक उसी प्रकार यदि आयु के इस पड़ाव में भी व्यक्ति संयमित जीवन शैली अपनाकर पूरे जोश के साथ खुद को मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखे, तो वृद्धावस्था ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी बीमारियों पर भी विजयश्री प्राप्त करते हैं। वहीं निराशा में डूबे कुंठा के शिकार युवाओं को 25-30 साल की आयु के आसपास ही थका हुआ और उदासीन जीवन जीते हुए देखा जा सकता है। वर्तमान आपाधापी भरे युग में आज व्यक्ति की औसत आयु में भारी गिरावट आई है। शतायु होना किसी विशिष्ट उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे जिंदा दिल उत्साही शतायु वृद्ध जन हमारे लिए प्रेरक का काम कर सकते हैं। उनके आहार विहार से व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अक्सर देखने में आता है कि नौकरी अथवा व्यापार आदि से सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की दिनचर्या में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे उन्हें बीमारियां भी घेरने लगती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कार्य मुक्त होने के बाद भी स्वयं को अन्य कार्यों में व्यस्त रखते हुए अपनी दिनचर्या को पूर्ववत बनाए रखते हैं, वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इसलिए वृद्धावस्था के बाद शारीरिक काम क्षमता में गिरावट आने लगती है। ये सोचकर निष्क्रिय होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को नियमित रूप से शामिल करने के अलावा संतुलित खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति में विवेकशीलता, कर्मशीलता और आत्मिक संतोष की त्रिवेणी का संगम हो, उसके पास वृद्धावस्था फटक ही नहीं सकती, क्योंकि वृद्धावस्था के तार मन की आंतरिक स्थिति से सीधे जुड़े रहते हैं। वृद्धावस्था आयु का वो पड़ाव है जहां तमाम संघर्षों के बाद व्यक्ति पहुंचता है और अनुभवों की आंच में तप कर कुंदन सा निखर उठता है। उसके पास अनुभवों की जो अकूत दौलत संग्रहित रहती है, उसका लाभ परिवार के सदस्यों को मिलता है। इसलिए आयु के इस पड़ाव में व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को संयमित करके चलेगा तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ बना रहेगा। जब तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो रचनात्मक कार्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, परिणाम स्वरूप जीवन के अंतिम पल को भी पूरी उमंग के साथ जी पाना संभव हो सकेगा। कहा भी जाता है कि वृद्धावस्था जीवन का वो किनारा है जहां व्यक्ति समस्त संघर्षों और तूफानों को चीर कर पहुंचता है और स्वयं को अधिक शांत, सुखी, समाज के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है। इसलिए वृद्धावस्था को बोझ न समझकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ जिएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। विषय था संसार। आलेख रमेश कुमार क्षत्रिय का। वाचन स्वर शैलेंद्र जोगी का भी आपने सुना। हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए जिसमें जानते हैं आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को दुर्गेश नामदेव का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुधी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम विवरण में। आइए जानते हैं आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से बस कुछ ही देर बाद यानी सुबह 6:50 पर कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा जरूर सुनिएगा। हेलो छिंदवाड़ा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री विनोद चौरसिया से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शेंडे की बातचीत जरूर सुनिएगा। वक्त एक बार फिर से बताते हैं आपको, सुबह 6:50 पर।

श्रोताओं, आज सुबह 7:20 पर कार्यक्रम विविधा जरूर सुनिएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे गर्भ अवस्था से पूर्व और पश्चात रखी जाने वाली सावधानियों पर डॉक्टर निधि जैन से बातचीत। 7:35 पर सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा जरूर सुनिएगा। 8:30 पर फिल्म संगीत का लुत्फ लेंगे। प्रातः 9:00 विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के लिए हम आपके लिए चलेंगे मुंबई केंद्र। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद आप लगातार ले सकते हैं प्रातः 10:00 तक। 10:00 जिले की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 का वक्त होगा लोक संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आज प्रातः 10:30 पर जरूर सुनिएगा। प्रातः 11:00 से लेकर दोपहर 2:00 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 का वक्त होगा लोक संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आज प्रातः 10:30 पर जरूर सुनिएगा। प्रातः 11 से लेकर दोपहर 2 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। और दोपहर 2 भोपाल से अनुप्रसारित होंगे खास कार्यक्रम आपके लिए। और 2:30 का वक्त होगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ने का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए हम आपके लिए चलेंगे मुंबई। कार्यक्रमों का आनंद आप लगातार ले सकते हैं सांध्यकालीन 5:30 तक। 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी जरूर सुनेगा। आज की बात का विषय होगा माता पिता का त्याग और समर्पण। इसके साथ ही आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता से वार्ता संपादित अंश जरूर सुनिएगा। साथ ही युववाणी के अंतर्गत करियर कामयाबी का क्रम होगा। तरुणों की पसंद होगी आज का इतिहास, कल के आकर्षण और ज्ञानमयी अमृतवाणी। शाम 6 माटी के स्वर जरूर सुनिएगा। 6:30 पर शाम को फिल्म संगीत

0: 7:20 पर कार्यक्रम किसान वाणी जरूर सुनिएगा, जिसमें आज की बात का विषय होगा टपक सिंचाई विधि का प्रयोग। होगी चर्चा कोकेडामा उद्यानिकी की एक कलात्मक विधि इस बारे में। साथ ही होंगे नियमित क्रम, रात्रि 8 बजे आपकी पसंद सुनवाएंगे आपको। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर केंद्रित होता है कार्यक्रम। रात्रि 8:30 पर एल्बम गीत का आनंद लेंगे। रात्रि 9 बजे केंद्र सरकार की 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। आज का विषय होगा गरीब कल्याण। 9:35 से आप विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। लगातार रात्रि 11 बजे तक आप विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुन सकते हैं। कार्यक्रमों की इन्हीं संक्षिप्त जानकारी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा के अंतर्गत आज हम सबसे पहले सुनवा रहे हैं आपको आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री विनोद चौरसिया से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शेंडे की बातचीत।
1: प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 9 दशकों से आकाशवाणी देश की आवाज बनकर जन जन तक सूचना, संस्कृति, साहित्य, संगीत और संवेदनाओं को पहुंचाता रहा है। बदलते समय और तकनीक के बीच भी रेडियो का यह आत्मीय रिश्ता आज भी श्रोताओं के दिलों में उसी गर्मजोशी के साथ जीवित है। इसी विशेष अवसर पर, इसी विशेष कार्यक्रम को लेकर आज मैं हाजिर हूँ आपका रेडियो दोस्त अमोल शेंडे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है श्री विनोद कुमार चौरसिया जी, जो कि लंबे समय से आकाशवाणी के नियमित और आत्मीय श्रोता रहे हैं। इनके अनुभवों और यादों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आकाशवाणी ने लोगों के जीवन में किस प्रकार अपनी खास जगह बनाई है। विनोद कुमार चौरसिया जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज।
2: बहुत धन्यवाद शेंडे जी। मैं विनोद कुमार चौरसिया पेशे से शिक्षक हूँ और आकाशवाणी से मैं लगभग 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आकाशवाणी से जुड़ने के कारण मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उसका बहुत बहुत ऋणी हूँ। बहुत बहुत मैं आकाशवाणी को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मेरे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत सहायता की है और मैं इसी कारण बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठा

0: में सफल भी हुआ, लेकिन मुझे पेशे से शिक्षकीय कार्य अच्छा लगा, इसलिए मैंने शिक्षक का पेशा अपनाया। आकाशवाणी मेरे लिए जीवन में जल की तरह है, जिस तरह से जल पानी प्यास बुझाता है, उसी तरह से आकाशवाणी भी मेरे लिए इसी तरह कार्य करता
1: है। जी बिल्कुल। चौरसिया जी, आप बहुत लंबे समय से रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो आपके जो पुराने अनुभव है, जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया, वो समय के आपके कुछ अनुभव रहे होंगे, वो हमसे साझा कीजिए आप।
0: रेडियो सुनने के लिए मैं आपको बताऊं बड़े मजेदार किस्सा था। मैं बहुत बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पिताजी ने एक रेडियो लेकर आया था
1: जी,
0: और उस रेडियो को मैं बहुत ध्यान से सुनता था
1: जी।
0: उस समय मेरी उम्र लगभग 13-14 वर्ष की थी
1: जी। जी
0: उस समय से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, मुझे वो पुराने रेडियो याद आते हैं
1: जी, जी।
0: जो आज भी मेरी आंखों के सामने दिखते हैं। और आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी और विश्व के बहुत से ऐसे रेडियो हैं जो मुझे आज भी नाम याद है
1: जी।
0: रेडियो जहाँ से हिंदी सर्विस सेवा होती थी विदेशों से, रेडियो जर्मनी, रेडियो कोलोन शहर, रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका, मैं इन चीजों को सुन सुनकर मैं बहुत वो हुआ। और मैंने तो घर में रेडियो अपने कमरे में रख लिया था और रात के बहुत रात तक मैं रेडियो को सुनता था
1: जी। जी
0: और मुझे आनंद की प्राप्ति होती थी। हाँ, बस हाँ, मैं रेडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ
1: जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पुराने समय में जब आप रेडियो सुनते थे, तो आप ऐसे कौन से कार्यक्रम थे जिनका बेसब्री से इंतजार करते थे, या आपके फेवरेट कार्यक्रम थे, पसंदीदा कार्यक्रम थे?
0: पुराने समय में मैं रेडियो जैसे बीबीसी लंदन है
1: जी,
0: रेडियो कोलोन है
1: जी,
0: जर्मनी से जो प्रसारित होता था, वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं समाचार वगैरह, समसामयिकी वगैरह, और जो ज्ञानवर्धक नॉलेज की बातें थी, विश्व राजनीति का पटल था
1: जी,
0: उस बात को मैं सुनता था, और उस बात को सुनकर मैं लोगों से बातचीत और चर्चा किया करता था रेडियो की।
1: चौरसिया जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले के रेडियो सुनने के माहौल में और आज के डिजिटल दौर में आप क्या फर्क महसूस करते हैं?
0: पहले के रेडियो जो हुआ करते थे, वो तकनीकी रूप से उतने क्वालिटी के नहीं होते थे, क्योंकि कुछ मौसम खराब वगैरह हो जाता था, तो मौसम के कारण में रेडियो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन आज डिजिटल होने के नाते रेडियो की जो स्थिति है, जो आवाज़ है, जो प्रोग्राम का प्रसारण है साफ सुथरा, वो बहुत अच्छा लगता है। आवाज़ और शब्द स्पष्ट आते हैं।
1: वैसे जी, आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी इतने वर्षों तक लोगों के दिलों से कैसे जुड़ा रहा है?
0: आकाशवाणी जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आकाशवाणी से जो प्रसारण होता है
1: जी,
0: वो गांव-गांव तक, दूर दूर तक जाता है
1: जी।
0: हमें मालूम है कि हमारा देश गांव में बसा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: गांवों में बसने के कारण में रेडियो की स्पष्ट आवाज वहां सुनाई देने लगी है, और सारी जानकारियां, चाहे मनोरंजन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे समसामयिकी हो, और चाहे प्रतिदिन के जो समाचार हैं, वो रेडियो में सुनाई देते हैं, लोग सुन रहे हैं, और सुनने के कारण उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए रेडियो आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण समाज के अंदर में अपना योगदान दे रहा
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चौरसिया जी, क्या आपको याद है कोई कार्यक्रम देख के आप भावुक या प्रेरित हुए हो?
0: जी, मैं कार्यक्रम को सुनकर बहुत भावुक और प्रेरित हुआ हूँ। जब विश्व में किसी प्रकार से कोई घटना होती थी, बीबीसी या अन्य रेडियो स्टेशन से जब मैं सुनता था, तो मुझे भावना मेरी बड़ी दया टाइप की हो जाती थी, ताकि एक मानवता के गुण जो होते हैं, उस तरह से मैं उसको महसूस करता था। आज के समय में मुझे रेडियो में छिंदवाड़ा रेडियो स्टेशन से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, आपकी फरमाइश, अनुरोध, आपके गीत, ये मीत मुझे बहुत अच्छे लगते
1: जी, जी। आपके अनुसार रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एक बड़ा मितवई साधन है
1: जी।
0: आदमी अपने काम करते हुए भी रेडियो को सुन सकता है, और रेडियो हर जगह उपलब्ध है, सरलता के साथ में उपलब्ध है, तो उस रेडियो को सुनने के लिए लोग आसानी से सुन जाते हैं और अपना आनंद उठाते।
1: क्या आपने कभी आकाशवाणी को पत्र, संदेश या फरमाइश भेजी है?
0: जी, हमारे एक प्रिय साथी है जो आकाशवाणी के प्रिय फैन हैं
1: जी,
0: श्री अनिल मालोनिया जी
1: जी,
0: उनके साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूँ
1: जी,
0: और रेडियो में, स्टेशन में भी मैं पत्र वगैरह भेजते रहता हूँ उन्हीं के माध्यम से
1: जी। तो जब भी आप नाम या संदेश प्रसारित हुआ था, आप कैसा महसूस करते थे?
0: नाम और संदेश जब प्रसारित होता है रेडियो में, तो एक आनंद की अलग ही अनुभूति आती है, और हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि आज हमारा नाम रेडियो में आया है
1: जी।

0: और अभी आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष मना रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: आकाशवाणी बहुत महत्वपूर्ण प्रसारण है और यह प्रसारण जन जन तक जाना चाहिए और अभी पहुंच भी रहा है। आकाशवाणी छिंदवाड़ा काफी दूर दूर तक मैं सुनता हूँ कि काफी दूर दूर के लोगों का पत्र आकाशवाणी छिंदवाड़ा में आता है और यहाँ लोग सुनते हैं, हमें भी सुनाई देता है कि दूसरे प्रदेशों से भी पत्र भेजते हैं।
0: जी,
1: तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा हमारा अपने कदम अग्रसर कर रहा
0: जी,
1: है।
0: चौरसिया जी, अभी हम हमारे कार्यक्रम के उत्तरार्ध की तरफ है, तो मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, नई पीढ़ी और श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: नई पीढ़ी और श्रोताओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि रेडियो का भरपूर प्रसारण सुने, उसमें सभी चीजें हमारे ज्ञानवर्धक होती है, हमारे जीवन के लिए सकारात्मक संदेश देती है और इससे हम हमेशा जो सोच रखते हैं वो सकारात्मक सोच रखते हैं और सारी दुनिया की जानकारी हमारे रेडियो से मिलती है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, यादों और जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम अपने अतिथि श्री विनोद कुमार चौरसिया जी को हार्दिक धन्यवाद कहना चाहेंगे, आपने आपके अनुभव यादें हमसे साझा की। चौरसिया जी, आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा में पधारे और आपकी पुरानी यादें हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सेंडे जी, आकाशवाणी परिवार को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारीपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका ताहुरा सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल भावना आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज सैयद सबीर रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सत्तर वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है। सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न, तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 बस होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब। विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर

0: रहिए धरती कहे पुकार के, अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
1: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी राम राज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
2: पुलिस कमिश्नर के बाद 3 पुलिस थाने

0: इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही है। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। यह कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
2: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गाँव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
3: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027

में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निमाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। राजस्थान जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरपीटी संस्था द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निःशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगर पालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अम्बेडकर उपवन में कल डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं श्रोताओ। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे गर्भ अवस्था से पूर्व और पश्चात रखी जाने वाली सावधानियों पर डॉक्टर निधि जैन से बातचीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविधा के नायक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमोल छिंडे। मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण माना जाता है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी की नींव रखती है। ऐसे में गर्भधारण से पहले की तैयारी, गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल और प्रसव के बाद माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। आज की बदलती जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के बीच महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी केयर को लेकर अनेक सवाल और जिज्ञासाएं रहती है। सही जानकारी और समय पर सावधानी न केवल माँ बल्कि शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर निधि जैन, जो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है और लंबे समय से महिलाओं के स्वास्थ्य एवं मातृत्व के देखभाल के क्षेत्र में कार्य करती है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
1: थैंक यू अमोल जी।
0: मैडम, बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं, स्वस्थ मातृत्व की तैयारी आखिर कब और कैसे शुरू होनी चाहिए?
1: मातृत्व की तैयारी है वो हमेशा पहले से ही प्लान करना चाहिए। जैसे कि मातृत्व जब भी प्लान कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो एक बार उनको अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि उनका खून का स्तर अच्छा है कि नहीं। ये सब चीजें तो फिजिकल

0: पैरामीटर हुए
1: जी
0: कि वो कितने हेल्दी हैं, उसके साथ साथ वो मानसिक रूप से पेरेंटहुड के लिए
1: जी
0: तैयार हैं या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी
1: जी
0: होता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले अपनी डाइट में क्या-क्या शामिल करना चाहिए?
0: प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले महिला को फॉलिक एसिड से
1: जी
0: रिच डाइट लेना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चों के न्यूरल ट्यूब जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड के साथ साथ फ्रेश खाना और जो भी हल्का सुपाच्य खाना है
1: जी
0: वो खाना चाहिए। साथ ही साथ उसे आके बच्चों का नरिशमेंट करना है, तो जो भी विरंगण आहार होते हैं
1: जी जी
0: जैसे कि उड़द की दाल,
1: जी
0: दूध और उससे बने हुए पदार्थ, और एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनका एक बैलेंस होना चाहिए।
1: जी
0: जैसे प्रोटीन रिच डाइट में वेजिटेरियन है तो वो पनीर का सेवन, दाल का सेवन, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज डाइट का सेवन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में वो चपाती ले सकते
1: जी
0: हैं और राइस का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं जिससे उनको विटामिन, मिनरल्स
1: जी
0: की
1: बिल्कुल
0: कमी पूरी होगी। और साथ ही साथ जो सूखे मेवे होते हैं उसका सेवन भी कर सकते हैं जिनसे सारी चीज़ों की कमी पूरी होती
1: जी
0: रहेगी।
1: बिल्कुल। मैडम अभी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या पुरुषों की भी लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रेगनेंसी पर असर डालती है?
0: हाँ जी, बिल्कुल असर डालती है। जैसे अगर पुरुष है और उनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है,
1: जी
0: ओवर वेट है या
1: जी
0: अंडर वेट है,
1: जी
0: और उसके साथ साथ अगर पुरुष में कुछ ऐसे नशा जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब की आदत है, तो उससे उनके शुक्राणुओं के स्वास्थ्य पर असर
1: जी
0: पड़ता है।
1: जी मैडम मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा, तनाव, नींद की कमी और जो अभी की लाइफस्टाइल है, उसका प्रेगनेंसी कंसीव करते समय कितना प्रभाव पड़ता है?
0: जैसे ये जो आपने तीन बिंदु रखे
1: जी
0: कि इस तनाव और जो ऐसा लाइफ स्टाइल जो कि आजकल बहुत मोबाइल वाला हो गया है,
1: बिल्कुल
0: या फिर नींद की कमी, ये एक दूसरे से पूरक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है
1: जी
0: तो उसको नींद नहीं आएगी और उसको तनाव होगा,
1: जी बिल्कुल
0: कोई तनाव में है तो वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा। ये सारी चीज़ें पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के हॉर्मोन्स, अच्छे संतान के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सब कुछ ब्रेन से रिलीज होते हैं।
1: जी
0: ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती
1: जी
0: है, उससे ये सारे हॉर्मोन रिलीज होते हैं। अगर इन सब के कारण आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, हॉर्मोन इम्बेलेंस हुए, तो आजकल इनफर्टिलिटी, जो बांझपन के केसेस ज़्यादा
1: जी
0: इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनमें जो ब्रेन से रिलीज होने वाले हॉर्मोन है उनका लेवल ही ऊपर नीचे मिल रहा है, और जिसके कारण उनको कंसीव होने में कठिनाई हो रही है। कंसीव हो जा रहे हैं तो एग की क्वालिटी अच्छी
1: जी
0: नहीं होने के
1: जी
0: कारण उनमें मिस कैरेज होने के,
1: बिल्कुल
0: गर्भपात होने
1: जी
0: के चांसेस ज़्यादा हो रहे
1: जी
0: हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं।
1: मैडम मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोचता है तो स्त्री और पुरुष दोनों के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो जो छोड़ना चाहिए, जो छोड़ना बेहद जरूरी होता है?
0: अल्कोहल का, स्मोकिंग का और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो आते हैं
1: जी
0: उनका सेवन करना त्यागना चाहिए।
1: जी
0: और साथ ही साथ कि जो भी फूड मटेरियल हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं,
1: जी
0: वो अगर हैविली प्रोसेसिंग हुई है, मतलब
1: जी
0: उसमें टेस्ट बनाने के लिए,
1: जी
0: जैसे बाजार में जो पैक्ड चिप्स वगैरह आते हैं और भी पैक्ड फूड मटेरियल जो भी आते हैं जिसमें प्रोसेसिंग करके उनकी लाइफ स्पान को बढ़ाया है
1: जी
0: या फिर उनका टेस्ट इंक्रीज किया है,
1: जी बिल्कुल
0: वैसे फूड को अवॉइड करना
1: जी,
0: चाहिए।
1: मतलब जंक फूड भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए
0: हाँ,
1: मैम
0: जंक फूड भी अवॉइड करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: और प्रेगनेंसी प्लानिंग जब हम करते हैं तो योगा, व्यायाम, इसका क्या महत्व है?
0: प्लानिंग के टाइम से पहले योगा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर सुरक्षित शरीर और मन होगा तो ही योग से ना मतलब व्यक्ति में स्थिरता आती है,
1: जी
0: चाहे वो महिला हो या पुरुष
1: जी
0: हो।
1: बिल्कुल
0: अगर वो योग करते हैं तो उनके हार्मोन बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ जो शरीर भी है वो फिट रहता है, और हार्मोन बैलेंस होने से उनके एग बनने में महिलाओं में दिक्कत नहीं आती, पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं वो स्वस्थ होते हैं,
1: जी
0: तो उससे जो प्रोजेनी होती है वो भी स्वस्थ ही
1: जी
0: रहेगी।
1: मैडम अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो पहले 3 महीने में, पहले ट्राइमेस्टर में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जैसे ही कभी भी महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है
1: जी
0: तो उसको सबसे पहले डॉक्टर विजिट करना चाहिए।
1: जी
0: ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों में कि 3 महीने तक डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसका मैं फायदा बताती हूँ कि
1: जी
0: अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, उससे ये होता है कि आपका सही समय पे फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाता है।
1: जी
0: जैसे फॉलिक एसिड की महत्ता मैंने पहले ही
1: जी
0: बता
1: जी
0: दी है
1: बिल्कुल
0: कि वो बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ कि अगर आप प्रेगनेंसी का जो केयर कर रहे हैं
1: जी
0: उसका भी एक आइडिया लगता है,
1: जी
0: जैसे कि अगर बच्चे में हार्ट बीट ही नहीं डेवलप हुई है
1: जी
0: और आप अपने हिसाब से प्रेगनेंसी मानकर उस डेड फीटस को आगे बढ़ा रहे हैं
1: जी
0: तो उससे भी दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि हमें पहली सोनोग्राफी जो है वो 6 से 8 हफ्तों के बीच करवा लेना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: और ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है लोगों

0: हैं कि सोनोग्राफी 12 हफ्ते के बाद करानी चाहिए। अगर बच्चे में हार्ट बीट डेवलप नहीं हुई है किसी भी कारण से, तो उसको 12 हफ्ते तक क्यों खींचना। तो जितनी जल्दी हो सके जो डेटिंग स्कैन उसको बोलते हैं, जो 6 से 8 हफ्ते वाली सोनोग्राफी होती है, उसे करवाना, ताकि पता चले कि सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है, बेबी लाइव है या बेबी लाइव नहीं है, इसकी जानकारी के लिए।
1: मैडम, गर्भवती महिलाओं को अपने डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए?
0: एक तो जितने भी डाइट में जो इम्पोर्टेंट घटक होते हैं
1: जी,
0: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का बैलेंस होना चाहिए। अब ये सारी चीजें किससे मिलेंगी? तो इसके लिए पहले खाने का पैटर्न होता है कि गर्भवती महिलाओं को थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से भूखे हैं और सीधे लंच किया और वो हैवी लंच किया, उससे उनको वॉमिटिंग हो जाएगी।
1: और मैडम, खाने में कौन कौन से घटक शामिल करने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ खाने चाहिए?
0: जैसे अगर गर्भवती महिला सुबह सो के उठती है, तो उसको सुबह उठते ही पानी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से अगर पानी पियेंगी तो उससे वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। तो मतलब उल्टी रोकने के लिए उनको कुछ ऐसी सूखी चीजें शामिल करनी चाहिए, जैसे वो रोस्टेड मखाना, मखाना भुना हुआ, वो खा सकते हैं डाइट में, या फिर कुछ हेल्दी टोस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो जो उनको गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से जो उल्टी का सेंसेशन होता है वो कम होगा। और उसके बाद जैसे अगर वो 6 बजे भी सुबह सो के उठते हैं, तो 7 बजे तक उनको कुछ हल्का जैसे ड्राई फ्रूट, नारियल पानी, ये सब चीजें थोड़ा लेना चाहिए। और उनको ना ऐसा नहीं है कि फिर 6 बजे के बाद सीधे वो 2 बजे लंच कर रहे हैं, उनकी डाइट में 8 बजे भी कुछ होना चाहिए, 10 बजे भी कुछ होना चाहिए, 12 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी, क्योंकि गर्भवती महिला एक साथ कुछ नहीं खा सकती।
1: नियमित अंतराल पे उनको थोड़े थोड़े भोजन का सेवन करना चाहिए।
0: और भोजन में जैसे आप चपाती ले सकते हैं, पराठे ले सकते हैं, हरी सब्जियों में गिलकी, लौकी, तुरई, परवल, ये सब ले सकते हैं। और उनको दही भी इंक्लूड करना चाहिए, और जो छाछ होता है वो भी सेवन करना चाहिए। अगर वो स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उसको फॉर्म में लेना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह भी स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। स्नैक्स में वो एक कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो उनके लिए सुइटेबल हो, जैसे एप्पल ऐड कर सकते हैं, अनार ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ करना चाहिए।
1: मैडम, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने तो बता दिया है कि क्या क्या चीजें आहार में शामिल करनी चाहिए, लेकिन आप अभी ये बताइएगा कि गर्भावस्था में कौन कौन से पदार्थ या चीजें हैं जो हमने अवॉइड करना चाहिए या जिनसे परहेज करना चाहिए।
0: जैसा कि मैंने प्री प्रेगनेंसी स्टेज का बताया कि जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और उसके अलावा गर्भावस्था में एक स्पेशल ध्यान देना होता है कि हल्का सुपाच्य ताजा खाना खाना चाहिए। जितना आप गर्म खाओगे खाना फ्रेश, वो अच्छा रहेगा। और वैसी चीजें जिनका तासीर गर्म होती है वो गर्भावस्था में कम से कम खाना चाहिए। लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, शुरू के 3 महीने में वॉमिटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन का डर रहता है, तो अगर आप स्वीट चीजें और लिक्विड चीजें खाएंगे तो अच्छा रहेगा।
1: मैडम, जैसे अभी आपने बताया है कि जिन पदार्थों की तासीर गर्म होती है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें परहेज करना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिनकी तासीर गर्म होती है?
0: जितने भी मसाले होते हैं ना वो सारे गर्म होते हैं, और कुछ गरम फल होते हैं, उनको बहुत एकदम रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। अपनी बॉडी को समझ के, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, डॉक्टर से सलाह लेकर उस हिसाब से अपना एक डाइट प्लान करना चाहिए।
1: मैडम, गर्भावस्था में हल्की एक्सरसाइज, चलना या योगा कितना सुरक्षित होता है?
0: पूरी तरह से सुरक्षित है। आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, और जो भी योगा अलग अलग ट्राइमेस्टर में, जैसे प्रथम तिमाह, द्वितीय तिमाह, तीन तिमाह, ऐसे 9 महीने को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं, तो ऐसे सारे ट्राइमेस्टर में अलग अलग तरह के योगासन कर सकते हैं डॉक्टर और योग प्रशिक्षक की सलाह से। और साथ ही अगर कुछ स्पेशल इंडिकेशन हो, जैसे कि कभी कभार जो बच्चेदानी में जो खेड़ी होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, वो कभी नीचे रहता है, तो उससे महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो उनको हम बेड रेस्ट सलाह देते हैं, बाकी सारे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं।
1: मैडम, गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य कितना असर डालता है?
0: मानसिक, अगर माँ को ही पोषण करना है बच्चे का, अगर माँ ही मानसिक रूप से खुश नहीं होगी या फिर किसी तरह से मानसिक बीमारी का शिकार होगी, तो बच्चे को उतना नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा माँ से, और अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: मैडम, प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त नींद का क्या महत्व है?
0: नींद का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने गर्भवती महिलाओं को रात की जो नींद है वो 7 से 8 घंटे बोला है, और दिन की भी कम से कम 1 से 2 घंटे नींद होना जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होती है माँ, तो बच्चों में डेवलपमेंटल डिले, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चों को जो एक ग्रोथ

0: थर्ड ट्राइमेस्टर में होनी चाहिए,
1: जी
0: वो ग्रोथ नहीं होती, और बच्चों में भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने का
1: जी
0: रिस्क बढ़
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: इसलिए नींद प्रॉपर
1: जी
0: होनी चाहिए।
1: मैडम, चूंकि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो आयुर्वेद में गर्भवती महिला की देखभाल को किस प्रकार देखा गया है?
0: आयुर्वेद में गर्भावस्था को एक बहुत ही सुखद अनुभूति माना है, और उन्होंने बीज संस्कार से ही शुरू किया है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
1: जी
0: तो आप स्त्री और पुरुष को अपने बीज की शुद्धि करनी
1: जी
0: चाहिए, मतलब स्पर्म और एग क्वालिटी करने के को इम्प्रूव करने के लिए
1: जी
0: उसमें संस्कार बताए हैं,
1: जी
0: क्योंकि गर्भावस्था को भी एक संस्कार माना है, जैसे 16 संस्कार होते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब
1: जी
0: से, वैसे गर्भावस्था भी एक संस्कार है, तो बीज शुद्धि बताते हैं। तो पंचकर्म जो प्योरिफिकेशन मेथड है जिससे हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, उसके गर्भावस्था के पहले ही बीज शुद्धि करते हैं,
1: जी
0: बीज शुद्धि के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद गर्भवती की जो मासानुमासिक आहारचर्या बताएगी कि हर महीने किस तरह का डाइट लेना
1: जी
0: चाहिए वो बताया गया है, और उसके साथ साथ कि जो गर्भ संस्कार कर सकते हैं, गर्भ संस्कार जैसे कि हमने ये पुराणों में वेदों में ऐसा देखा है कि जो गर्भ को है ज्ञान वो गर्भावस्था से ही, जैसे जो भी बच्चा है वो
1: जी
0: गर्भावस्था से ही उसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है,
1: जी
0: तो हम उस गर्भ को संस्कृत करने के लिए, मतलब उसमें गुणों का और भी अच्छे से डालने के लिए हम गर्भ संस्कार करते हैं,
1: जी
0: जिससे हम महिलाओं को एक विशेष आहार चर्या, उनको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस आहार विहार ये सारा बताते हैं,
1: जी
0: साथ साथ उनको मंत्र थेरेपी देते हैं कि गर्भावस्था में जो मंत्र हैं वो गर्भ के पोषण के लिए और वृद्धि के लिए, उससे चिकित्सा करते हैं, साथ साथ कुछ म्यूजिक थेरेपीज भी होती
1: जी
0: हैं उस वो गर्भ संस्कार में हम शामिल करते हैं।
1: जी मैडम, क्या आयुर्वेद में ऐसे आहार या दिनचर्या बताए गए हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी हो?
0: आयुर्वेद में जैसे प्रथम 3 महीने में मधुर रस, जो स्वीट वाला डाइट
1: जी
0: है वो
1: जी
0: इंक्लूड करना चाहिए, ठंडा भोजन इंक्लूड करना चाहिए, और उसके साथ साथ लिक्विड डाइट करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में उल्टी होने के कारण पानी की कमी होती है, और मधुर शीत और द्रव पदार्थ जो होते हैं वो इस कमी को पूरा करते हैं। और ऐसे ही आगे के महीनों में उन्होंने डाइट में चावल के साथ
1: जी
0: बटर का होना बताया है, और कुछ औषधियाँ जैसे गोक्षुर वगैरह, जो प्रेगनेंसी में बॉडी में स्वेलिंग होती है, एक प्लांट होता है गोक्षुर, उसको
1: जी
0: डाइट में शामिल होना बताया है। साथ ही साथ जैसे जो पंचकर्म चिकित्सा है, वैसे तो गर्भिणी में मना है, लेकिन 8वें 9वें महीने में सुख पूर्वक प्रसव हो उसके लिए वस्ती चिकित्सा बताई है,
1: जी
0: जिसमें हम मेडिकेटेड तेल वगैरह को एनल रूट से
1: जी
0: गर्भवती में इंट्रोड्यूस करते हैं,
1: जी
0: जिससे प्रसव सुखपूर्वक हो
1: जी
0: सके।
1: मैडम, अभी हम चर्चा करते हैं प्रसव के बाद के विषय में। प्रसव के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: वो इस बात पे निर्भर करता है कि महिला का जो भी डिलीवरी हुआ है
1: जी
0: वो नॉर्मल हुआ है या ऑपरेशन के थ्रू हुआ
1: जी
0: है। तो नॉर्मल डिलीवरी में मूवमेंट जो है वो थोड़े समय में ही स्टोर हो जाता है,
1: जी
0: थोड़ा ऑपरेशन में जिनमें सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है उसमें हमें थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर हम महिला को जल्दी ही चलने फिरने को बोलते हैं तो महिलाओं में जो टांके वगैरह लगते हैं उसकी हीलिंग अच्छी होती है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि महिला पूरे टाइम लेटे रहे, लेटे रहने से टांकों की हीलिंग अच्छी नहीं होती, तो उनको अगर डॉक्टर ने जब भी सलाह दे दी है उस हिसाब से वॉक शुरू कर देना चाहिए। वॉक शुरू करने के बाद उनको अपने टांकों की केयर करना
1: जी
0: चाहिए, और जैसे कि डिलीवरी के टाइम ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल डिलीवरी में 500 से 800 ml तक का ब्लड लॉस होता
1: जी
0: है, ऑपरेशन में 1000 से 1200 ml तक का ब्लड लॉस होता है,
1: जी
0: कुछ स्पेशल कंडीशन में ज़्यादा ब्लड
1: हाँ
0: लॉस भी
1: हाँ
0: होता है,
1: हाँ
0: तो जो भी उनके खून की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए जो डाइट है
1: जी
0: वो खून को बढ़ाने वाली डाइट लेना चाहिए,
1: जी
0: और अपने टाँकों की केयर भी अच्छी करनी
1: जी
0: चाहिए। फिर महिला को दूध अच्छे से हो ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके,
1: जी
0: उसके लिए जैसे शतावरी, अश्वगंधा, जीरा ऐसी औषधियों को शामिल करना चाहिए, और डाइट भी ऐसा लेना चाहिए जो दूध को बढ़ाने वाला हो, जिससे बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट मिले,
1: जी
0: और हमेशा जब टाखों की हीलिंग हो जाए तो जैसा ही पॉसिबल हो अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू कर देना चाहिए,
1: जी
0: ताकि उनका वेट गेन एबनॉर्मल तरीके से ना हो पाए।
1: जी मैडम, प्रसव के बाद नई माँ का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, तो उनके शरीर के रिकवरी के लिए क्या जरूरी है?
0: उनके शरीर के रिकवरी के लिए एक तो नींद अच्छी होनी ज़रूरी है,
1: जी
0: क्योंकि बच्चे भी रात में जगाते हैं तो माँ तनाव में रहती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: मैडम
0: नींद ज़रूरी है, और जैसा मैंने बताया कि खून की कमी होती है, और जो

0: माँ का पूरा न्यूट्रिशन बच्चे में लगता है, उसके
1: हम्म,
0: लिए माँ का को कैल्शियम रिच डाइट और
1: जी
0: आयरन रिच डाइट देना चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ दे
1: हम्म,
0: सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते
1: जी
0: हैं, और जो घर में महिलाएं जानते हैं कि जो वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह बनाते हैं, वो महिलाओं को दीजिए। और उसके साथ साथ औषधियाँ, जैसे दशमूला रिष्ट है और दशमूल का काढ़ा, क्योंकि उस समय शरीर में वात दोष बढ़ा होता है, तो इसको भी हम उनके आहार में शामिल कर सकते हैं।
1: जी मैडम, डिलीवरी के बाद मानसिक तनाव या मूड चेंजेस की जो समस्या है वो महिलाओं में, नई माताओं में काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, तो इसको कैसे संभालें?
0: नई माताओं में जो मूड चेंजेस होते हैं, और साथ ही जैसे जिनका अर्ली मैरिज होता है, वो भी इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो
1: जी
0: बच्चे को पाल सकें,
1: जी
0: ये बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं आती हैं, जैसे कि मदर के अंदर, कि हम ही बच्चे के लिए रात भर क्यों जगें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है,
1: जी
0: मतलब पिता का भी उतना कर्तव्य है
1: बिल्कुल
0: और घर के अदर सदस्यों का भी उतना
1: जी
0: ही
1: बिल्कुल
0: कर्तव्य है। तो घर के जितने भी सदस्य हैं, उनको माँ की नींद का,
1: जी
0: माँ के आहार विहार का पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी वो बच्चे, माँ के मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे।
1: जी
0: क्योंकि जो पोस्टपार्टम जो मानसिक तनाव होता है, वो डिप्रेशन और सुसाइड में भी कन्वर्ट हो
1: जी
0: सकते, केसेस आते हैं
1: जी जी जी
0: हमारे पास, तो उसको वो करने के लिए ये सबसे पहले पिता की जिम्मेदारी है और घर
1: जी
0: के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है
1: हाँ
0: कि वो समय समय पे बच्चे को बीच बीच में वो खुद देख रेख करे, और बस बच्चे को फीडिंग के टाइम पे मदर को दे, और साथ में जैसे अगर माँ की नींद पूरी नहीं हो पाई है तो उसकी नींद का ध्यान रखे,
1: जी
0: तो सब सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: जी मैडम, अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई विशेष लाइफस्टाइल मदद कर सकती है?
0: बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये सब चिकित्सक पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक माँ की को एग्जामिन करके ही डिसीजन लेता है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सिजेरियन सेक्शन लेना है।
1: जी
0: वो सब मेडिकल साइंस का विषय है,
1: जी
0: और अगर आपके बच्चे का वजन ज़्यादा है और माँ की जो हड्डी है, पेल्विक बोन, वो बहुत छोटी है, और सिजेरियन के ही चांस है, नॉर्मल का कोई चांस ही नहीं है, बच्चे का वजन ज़्यादा है या फिर और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो ऐसे केस में हम जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी चीज़ें बताई हैं, आयुर्वेद में भी बताई गई हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे हम कुछ औषधि का सेवन कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब आप बिल्कुल करिए, बट चिकित्सक की देखरेख में करिए।
1: जी
0: ऐसा नहीं
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए कि पूरा टोटली इंडिकेशन सिजेरियन सेक्शन का है, जैसे माँ का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है डिलीवरी के टाइम पे, आप फिर भी जबरदस्ती नॉर्मल का फोर्स कर रहे हैं, तो वो माँ के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है।
1: ऐसी कुछ भ्रामक कल्पना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता हो या मसालेदार पदार्थ हो, इसका पूरी तरह से हटानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: ये तो मिथ है एक तरह से,
1: जी
0: क्योंकि जैसे पपीता खाने से मिस कैरेज होता है, ऐसा कुछ रिसर्च एविडेंस नहीं है, और पाइनएप्पल खाने से भी कोई मिस कैरेज होता है, ये भी रिसर्च प्रूवन नहीं है। पाइनएप्पल और पपीता में जो भी केमिकल घटक होते हैं, जैसे ब्रोमेलिन होता है पाइनएप्पल में, पपेन पपीता में होता है, तो ये सारी चीज़ें इतनी क्वांटिटी में नहीं होती हैं कि, ये गर्भ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये
1: जी
0: इतनी क्वांटिटी में नहीं होता है कि अगर आप एक दो पीस खा लोगे तो आपका गर्भपात हो
1: जी
0: जाएगा,
1: जी जी
0: तो ये बिल्कुल भ्रामक चीज़ें हैं। और मैंने भी अपनी गर्भावस्था के दौरान पपीता का सेवन किया,
1: जी
0: तो ऐसा कुछ नहीं
1: हाँ
0: हुआ,
1: हाँ
0: बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: तो ये मिथ ही है। और
1: जी
0: जैसे अगर गर्भावस्था में मसाले खाने का मन हो
1: हाँ
0: रहा है, कुछ
1: हाँ
0: चटपटा चीज़ें हैं, जो गर्भिणी महिला है उसकी जो भी इच्छाएं हो उनको
1: जी
0: वो नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: आप जो हेल्दी तरीके, आप
1: हाँ
0: बाजार का चटपटा नहीं खिलाओ, घर पे
1: हाँ
0: जो भी उसको पसंद है वो खिला सकते।
1: मैडम, अभी हम कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे श्रोताओं को, विशेषकर महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैसे कि गर्भावस्था एक सुखद अनुभव है,
1: जी
0: तो जाते जाते यही संदेश दूंगी कि जो गर्भावस्था आनी चाहिए वो चॉइस से आनी चाहिए, चांस से नहीं आनी चाहिए कि गर्भावस्था बस रुक गई और फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। तो आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहिए, ताकि आप गर्भ के पोषण में दोनों अच्छे तरह से योगदान दे सकें।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष चर्चा में हमने जाना कि स्वस्थ मातृत्व के लिए सही जानकारी, संतुलित आहार, सकारात्मक सोच और समय पर सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर निधि जैन जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आज हमने जाना गर्भ अवस्था से पूर्व और पश्चात रखने जाने वाली सावधानियों पर डॉक्टर निधि जैन से बातचीत। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है गीत गंगा। श्रोताओं, आज की गीत गंगा प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर केंद्रित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की यह पहली प्रस्तुति।

70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत गंगा यहीं समाप्त होता है। आज का गीत गंगा कार्यक्रम सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर केंद्रित था। 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसान

0: को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: वही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी

0: के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
1: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनको मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे।
0: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन

0: बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए सुमन कल्याणपुर के गाए हुए गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र, लुत्फ ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज सुमन कल्याणपुर

श्रोताओं, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं श्रोताओं, अब हम सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए और इसी गीत का आनंद लेते रहिए।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है, नेहा कक्कड़ की आवाज।

सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी विश्व वैश्विक मातृ पितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो है हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु।

पैदा होते हैं, उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बनें और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रयोग कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: इश्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सफाकत अली और साथियों की आवाजों में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा था, अनुराग सैकिया का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आज है वर्ल्ड मिल्क डे, आज विश्व दुग्ध दिवस है। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व को जानना, डेयरी क्षेत्र के योगदान, या कहें कि डेयरी क्षेत्र के समग्र योगदान को जानना। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों पशुपालकों, डेयरी कर्मियों और वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के योगदान को भी सम्मान देने की ओर यह दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे घरों तक पहुंचता है। एक ग्लास दूध में किसान की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और उदारता और त्याग, साथ ही डेयरी व्यवस्था का अथक प्रयास भी इसमें समाहित होता है। विश्व दुग्ध दिवस पर आइए इस अमूल्य योगदान का सम्मान करें और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। और एक संदेश आपको और सुनाते हैं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है।

बलरामपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है।

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थी। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए सुने सुमन कल्याणपुर की गाई एक लोरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबां पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी।

किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपये की लागत से श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसके अंतर्गत आज हमने सुना इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, सुबह के 10:30 हुए हैं। जी हाँ, सुबह के 10:05 का वक्त होता है लोक संगीत का, क्योंकि आज है दिन सोमवार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामचरण अहिरवार की आवाज के साथ, ये दादरा गीत।

कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत की हमने रामचरण अहिरवार के गाए इस दादरा गीत के साथ।

आपने की उनकी है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र, लुत्फ ले रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत का। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना ठाकुर शहजाद सिंह का स्वर। अब सुनिए राम किशोर सूर्यवंशी का स्वर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र, लुत्फ ले रहे हैं लोक संगीत का। जबलपुर में घूमे अकेली, इस लोकगीत को गाया था रामकिशोर सूर्यवंशी ने। अब सुनिए चंद्रकांता पाठक का स्वर।

श्रोताओं, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर

0: भारती कौशिक, आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं,
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
0: जी,
1: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
0: जी,
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है,
0: बिल्कुल,
1: सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
0: जी,
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
0: जी,
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक
0: जी,
1: है
0: जी,
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
0: जी,
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हों किताबें, रिकॉर्डेड हों,
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हों, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती हैं।
0: जी,
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी,
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी,
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
0: जी,
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम

0: जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी,
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी,
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी,
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।

0: ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का
1: इस्तेमाल
0: इस्तेमाल करते
1: करते
0: हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से। उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है,
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है।

0: वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईईटी एनसीईआरटी,

0: तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से
0: जी
1: मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
0: जी।
1: और एक और सरल उपाय है
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा
0: जी।
1: और आप वहाँ से ले सकते हैं।
0: जी
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
0: जी,
1: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIET की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
0: जी,
1: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
0: जी,
1: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
0: जी,
1: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
0: जी,
1: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
0: जी,
1: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
0: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
0: जी,
1: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
0: जी,
1: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।

0: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
1: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
0: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
1: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
0: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
1: हाँ।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। तो आपको लिए चलते हैं हम मुंबई। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में। बेनी सतमकर का संगीत है।

होते खुले जग होते होती है मगर गम वो सा।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च

0: न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

0: मुझे श्रीमान से
1: लाया मैं पंजाब से
0: रूप लाई
2: आंधी और तूफान। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
2: यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
6: कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
6: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
7: इससे आपको मतलब?
6: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
7: जी
6: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
7: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
6: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपका क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: सेवा के बारे में बात।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की

0: वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

0: देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से। बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत ख़ास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफ़र पर हमारे साथ। इस सुरीले सफ़र में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता, चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ

देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या में क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की शोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे। सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है। और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात। एक और श्रोता कह रही हैं कि कहीं पढ़ा था बच्चे को माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियाँ यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो

अनमोल छाया हैं जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और हाँ आवाज़ें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाज़ें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेम नाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफ़र शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफ़र पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई, कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

समझ से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को ख़ास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए हैं ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नज़ारा देखने मिला, तब से पंछी बनूं उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि ज़िंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता हैं। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए ज़रूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमज़ोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही

0: रोते रोते।
1: जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब ही लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवी कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो ख़राब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का नज़रिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नज़र आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ ख़जाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएँ। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज़ वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है।

और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है। कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें। मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। असल और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं, ये भी जीवन का आनंद है। छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहाँ माँ के आंचल की छाँव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मज़ा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएँ और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और सही जवाब आ गया, आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारे श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताज़ा हुई, मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था, वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए, माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आज़मी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई ख़जाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत. पहला गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ है. आज पूरा भारत, आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए है. गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का.
2: राग तेलंग आकाशवाणी के

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रोसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रोसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा, इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओली गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूजीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च

स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डो में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा

0: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
3: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज़ की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज़, साथ में मोहम्मद रफ़ी बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज़ की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुमया।

इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा और फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है,
2: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज़ को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने

0: लाइन लिखे कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज़ दी
1: बिल्कुल। और उनकी आवाज़ हमने जन जन तक पहुँचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी

0: सुन लेते हैं।
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की

0: देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूँ ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता?
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे, संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
3: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।

0: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। तीन लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
2: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
2: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
3: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
4: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
2: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
4: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा।
2: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
4: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
1: अच्छा,
4: जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपये मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपये देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्त तेरे लालची।
4: 200 रुपये नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
3: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होऊंगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
3: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर

0: विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती। नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नज़रों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
5: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर
5: कल
6: बर्थडे मनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।
7: Thank you.

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीज़ों के आसपास होते हैं ना, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज़ होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक

0: जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें
1: करना चाहिए ना।
0: और
1: हाँ
0: हाँ उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
1: कर
0: पसंद
1: सकते
0: का
1: हैं।
0: खाना बना
1: हाँ
0: सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
0: जी
1: होते हैं। और
0: जी
1: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
0: जी
1: हमारी पहली पाठशाला होते
0: बिल्कुल
1: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं। और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
0: जी,
1: है ना।
0: और उसका कारण भी है
1: मोबाइल
0: मोबाइल।
1: और सोशल मीडिया, ये
0: जी
1: हमारी जिंदगी बन गए
0: जी
1: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं नहीं
1: ये
0: नहीं
1: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
0: जी
1: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे। तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था।
1: लगता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे। और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के
0: जी
1: उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर बात
0: लिखकर
1: लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो

0: ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी,

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: वहम नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है क्योंकि दूध के बिना मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप,
0: आलू चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें इसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

0: होगा मंजरी बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है
1: बिल्कुल।
0: मंदाकिनी
1: और
0: जी।
1: मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना,
0: जी
1: धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ, अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं। सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा, पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें, और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1 छोटी चम्मच अजवाइन ले लें, और काली मिर्च ले लें, और दरदरी कुटी हुई नमक, और तेल तलने के लिए, और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो।
0: बिल्कुल।
1: फिर आटा आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन, और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए, और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें।

0: काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए। और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज़्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्ठी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें। और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
3: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
3: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
3: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में
3: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स आल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां

0: लेंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
1: रास्ता
0: मसाज,
1: निकालेगा।
0: हाँ मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे। और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए
0: छोटे
1: ये भी
0: बच्चों के लिए
1: तरीका है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल।
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें,
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज, उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद।

0: से कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए।
1: मुश्किल हो जाती।
0: दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की।
1: हाँ जी।
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है।
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्ट।
0: डॉक्टर साहब मर गए, बचा लो।
1: हाँ जी। उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस। फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: होता है।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात है,
1: सेम बात यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरिया से वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
0: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
1: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
0: जी।
1: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है, नहीं तो सुबह तक वो भी कुदरती

0: देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो सिक्रेशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश
0: ब्रश
1: करना
0: करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: होता है।
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
0: सही,
1: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
0: अखरोट
1: से,
0: जैसे,
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा है।
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है। मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा?
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है महबूबा,
0: क्योंकि दांतों में
1: गाना
0: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: हाँ, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस yes.
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।

0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि
1: एग्जैक्टली
0: दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर। मतलब एक सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है, लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें दो तीन बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना। जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी दो या तीन जड़ें होती है, उस जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा हूं।
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
0: ओके,
1: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
0: तो वो
1: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
0: ओके,
1: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके,
1: एक
0: डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
1: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट

0: हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ।
1: जी
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
2: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है। उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
2: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात

0: आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा,
1: जी
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
1: हाँ
0: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट। बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पर और वो हड्डी गल रही है। तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी
1: इसकी बात करते हैं, और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे
1: पायरिया
0: में।
1: का
0: पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
1: अच्छा वो दांतों की बीमारी नहीं है।
0: दांतों की बीमारी नहीं है, ये
1: ओहो
0: पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब
1: तब
0: उसका
1: तो
0: सपोर्ट
1: जाके
0: जाएगा,
1: यस
0: तब दांत हिलेगा।
1: ये
0: तो
1: लंबा
0: हड्डी
1: मामला है।
0: वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे

0: डिजीज में ग्रेड वन वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक, मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन
0: exactly,
1: है,
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है,
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया, तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे क्योंकि आप
0: क्योंकि आपने
1: करना सीखे।
0: एग्जैक्टली,
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सर्फेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120-130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5-15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते 110-115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
1: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
1: एग्जैक्टली,
0: तो रोजमर्रा

0: की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
0: बिल्कुल,
1: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है, मन की उड़ान शहरों समंदरों पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ, खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

0: मेरी जिंदगी।
1: तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं और ये वक्त है युवा साथियों के अपने कार्यक्रम युववाणी का।

श्रोताओं का हम तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का सफर। श्रोताओं, आज आपके साथ है आपकी अपनी रेडियो दोस्त रश्मि पाठक। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं हमारी आज की बात से, जो एक बेहद खास दिन को समर्पित है। जी हाँ मित्रों, आज

0: का विषय है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता का त्याग और समर्पण। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे सच्चा, सबसे निस्वार्थ और सबसे मजबूत होता है तो वो है माता पिता का रिश्ता। माता पिता वो होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों की छोटी सी तकलीफ में भी बेचैन हो जाती है, जिसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों की सलामती होती है, जो खुद की नींद, आराम और खुशियाँ तक अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती है, और एक पिता जो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ चेहरे पर मुस्कान के साथ उठाता है, जो दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों के सपने कभी अधूरे ना रहें। कई बार पिता अपने दर्द को छुपा लेते हैं, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों को कभी नहीं। श्रोताओं, बचपन में जब हम गिरते थे तो सबसे पहले हमें उठाने वाले हमारे माता पिता ही होते थे। जब हम डरते थे तो उनका हाथ हमें हिम्मत देता था, और जब हम हार मानने लगते थे तब वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार माता पिता को समय देना भूल जाते हैं। कभी मोबाइल, कभी काम, कभी दोस्तों की दुनिया, इन सब के बीच हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे माता पिता सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त और प्यार चाहते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हमें यही याद दिलाता है कि माता पिता का सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। उनका त्याग और समर्पण किसी एक शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने सपने को छोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे कर देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे खुश रह सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन आज की पीढ़ी के जवान बच्चे अपने माता पिता को खुद से दूर करते जा रहे हैं। खुद की खुशी के लिए और अकेलेपन के लिए उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये करना सरासर गलत है कि जिन्होंने आपको पाल पोसकर बड़ा किया, आप उन्हीं के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ युवा जो अपने माता पिता को छोड़कर विदेश चले जाते हैं इस डर से कि कहीं इनकी जिम्मेदारी हमें ना उठानी पड़े। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस घर में माता पिता मुस्कुराते हैं उस घर में खुशियाँ कभी कम नहीं होती। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ समय बिताइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, और कभी ये मत भूलिए कि उनकी दुआएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आइए साथ मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उन्हें प्यार देंगे और उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ आज की बात को यहीं देते हैं विराम, और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के 90वें वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता स्नेहा नागवंशी से वार्ता का संपादित अंश।
1: नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा नागवंशी है और मैं छिंदवाड़ा की निवासी हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण सेवा नहीं है बल्कि यह भारत की आवाज़, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसकी विविधता का सशक्त माध्यम है। पिछले 90 वर्ष से आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसने समाज के जागरूक बनने, लोगों को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अमूल्य योगदान दिया है। जब संचार एक आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे तब आकाशवाणी ही लोगों तक समाचार और जानकारी पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय माध्यम थी। गांव में लोग रेडियो के आसपास बैठकर समाचार सुनते थे, किसान कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करते थे और विद्यार्थी शैक्षणिक कार्यक्रमों से लाभ उठाते थे। आकाशवाणी ने हर वर्ग और हर आयु के लोगों को कुछ न कुछ दिया है। आकाशवाणी की सबसे विशेष बात यह है कि इसने भारतीय संस्कृति, लोककला, साहित्य और संगीतों को

0: संरक्षित करने का कार्य किया है। अनेक महान कलाकारों, गायकों, कवियों और साहित्यकारों को आकाशवाणी के मंच से अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। यदि मैं आकाशवाणी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम युवावाणी की बात करूं, तो यह युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक मंच रहा है। युवावाणी ने देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा, विचार, रचनात्मकता व्यक्त करने का अवसर दिया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आवाज़ समाज तक पहुंचा सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर अपने विचार रख सकते हैं। युवावाणी ने अनेक युवाओं में आत्मविश्वास विकसित किया है। यह केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों, विचारों और आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला मंच है। आज के समय में जब युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तब युवावाणी जैसे कार्यक्रम उनकी ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए विशेष खुशी होती है कि आकाशवाणी ने युवाओं को केवल श्रोता नहीं माना, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर भी दिया। इससे युवाओं में संचार कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। युवावाणी वास्तव में युवाओं और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बनाए हुए हैं। नई तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। बदलते समय के साथ स्वयं को ढालना और फिर भी अपनी मूल पहचान को बनाए रखना आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक है। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक संस्था की सफलता नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक यात्रा का गौरवशाली इतिहास है। यह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा है। अंत में मैं आकाशवाणी परिवार, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्देशकों, कलाकारों और श्रोताओं को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आकाशवाणी आने वाले वर्षों में भी इस प्रकार जन सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता स्नेहा नागवंशी से वार्ता का संपादित अंश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तरुणों की पसंद की ओर, जिसमें पहला खत हमें प्राप्त हुआ है ग्राम आलीवाड़ा, ब्लॉक तामिया, जिला छिंदवाड़ा से देवीराम इनवाती, दामिनी इनवाती का। साथ ही शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव जी का। इनकी फरमाइशों पर सुनिए फिल्म कच्चे धागे का ये गीत, जिसे सुरों से सजाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

0: पिता छोड़ सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
1: पर नए बैचेस कब से हैं?
0: इसे 1 जून से अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
2: क्रम दोनों की पसंद रहेगा जारी, पर उससे पहले जानते हैं क्रम करियर कामयाबी का, जिसमें हम आज बात करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर। श्रोताओं, आज की जिंदगी में हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। कोई अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहता है, कोई अपने परिवार की, तो कोई अपने वाहन और घर की। यही कारण है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से विकसित हो रही है। कुछ साल पहले तक लोग इंश्योरेंस को सिर्फ एक पॉलिसी या बचत का तरीका समझते थे, लेकिन आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल सेक्टर बन चुका है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी सेवाएं देती है जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए, वाहन खराब हो जाए या किसी तरह का नुकसान हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आर्थिक सहायता देती है। सरल शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा देने का काम करता है। आज लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, हर कोई अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सर्विसेज का इंश्योरेंस लेना पहले से काफी आसान हो गया है। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड और भी तेजी से बढ़ी है। आज लगभग हर परिवार हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी समझ रहा है। इसी वजह से इस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ एजेंट ही नहीं बल्कि कई प्रोफेशनल पद होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस एडवाइजर, सेल्स ऑफिसर, क्लेम मैनेजर, अंडरराइटर, रिस्क एनालिस्ट, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आदि। इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार के इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और बिजनेस इंश्योरेंस उपलब्ध है। आज हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर माने जाते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन अच्छी पोस्ट और बेहतर सैलरी के लिए ग्रेजुएशन करना फायदेमंद होता है। अगर आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो ये कोर्सेस कर सकते हैं, जैसे कि MBA इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट, MBA इन फाइनेंस, PG डिप्लोमा इन इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट कोर्सेस आदि। श्रोताओं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में शुरुआती सैलरी लगभग 15,000 से 30,000 रुपये तक हो सकती है। एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार के अवसर और बढ़ने वाले हैं। डिजिटल इंश्योरेंस, ऑनलाइन पॉलिसी सर्विसेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस के कारण इस क्षेत्र में स्किल्ड युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं, अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जहां सम्मान, अच्छी कमाई, ग्रोथ और लोगों की मदद सब कुछ हो, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है। आज के लिए कामयाबी बस इतना ही। पुनः जुड़ते हैं क्रम तरुणों की पसंद से, जिसमें अगला फरमाइशी खत हमें प्राप्त हुआ है पिपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हरिराम साहू, श्रीमती तारा साहू, गगन साहू, रोशनी साहू, चंद्र प्रकाश साहू, वंदना साहू, मास्टर प्रिंस व यूवी साहू, सलीम अंसारी, भवानी साहू, पप्पू साहू जी का। इनकी मिली जुली फरमाइशों पर सुनिए आशा भोसले के स्वर में शहरयार की रचना, संगीत है खयाम का और फिल्म का नाम है उमराव जान।

0: यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
1: चिंता छोड़, सीधे नितीश एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
0: पर नए बैचेस कब से हैं?
1: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें, पता नितीश एकेडमी ट्राइबल म्यूजियम के पास छिंदवाड़ा।
2: वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी आईसीएसई पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है एसबीआई मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
3: अब सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म आरजू का गीत बोल है हसरत जयपुरी के, आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी, साथ ही मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागत कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्र

यशवंत वर्मा, सीमा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से, साथ ही पुणे से हैं। पंकज बाड़ोदे आर्या आदि जरूर बड़ू से, बाबा साहेब बाड़ोदे मीनाक्षी चरपे जी

मित्रों, अगर आप भी अपना फरमाइशी पत्र हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है, तरुणों की पसंद, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कुकड़ा हिल्स, छिंदवाड़ा। हमारा पिन कोड है 480001। हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। अब जानते हैं आज का इतिहास। 1 जून सन 1930 में भारत की पहली डिलक्स और लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन को बॉम्बे और पुणे के बीच हरी झंडी दिखाई गई थी। 1955 में आज ही के दिन भारत में अस्पृश्यता अपराध कानून अस्तित्व में आया, जिसके तहत छुआछूत का आचरण करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया। श्रोताओं, अब जानते हैं कल के आकर्षण। कल हमारी आज की बात का विषय होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सावधानी से करें प्रयोग। विज्ञान जगत में जानेंगे वैज्ञानिक सोच के मायने। आपके मनोरंजन के लिए होगा क्रम फिल्म संगीत का। आगे जानेंगे आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अंत में अमृतवाणी। और अब हम भी जान लेते हैं हमारी आज की अमृतवाणी। सत्य और सत्य में एक ही समानता होती है, दोनों को सजाने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ आज का सफर आपने तय किया रश्मि पाठक के साथ। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी युवा साथी सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शाम के 6 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।

0: तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
1: चिंता छोड़, सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
0: पर नए बैचेस कब से हैं?
1: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
2: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए आपको सुनवाते हैं रमेश प्रसाद विश्वकर्मा की आवाज में ये बादरा।

Akashvani at 90. माटी के स्वर में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बुंदेली गीत शाहिदा कुरैशी के स्वर में।

कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे श्रोता, उससे पहले एक इश्तहार सूचना आपको दे दें। 24/5/2026 दिन के 11 बजे से रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के ओवर ब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति जिनका नाम फूलचंद यादव, पिता छगनलाल यादव है, जो कि गुम हो गए हैं। उनका कद 5 फीट 5 इंच है, बदन सामान्य रंग गेहुआ है, बाल काले, हल्की दाढ़ी मूछ है, आंखें बड़ी, नाक के ऊपर एवं दोनों आंखों के बीच में कट का निशान है। दाहिने हाथ में चूड़ा पहने हुए हैं, दाहिने हाथ की ही उंगली में सफेद निशान बना हुआ है। भाषा सामान्य हिंदी है, हिंदी बोलते हैं। गोल गले की टी शर्ट, नीले रंग का जीन्स पहने हुए हैं और सिंदूरी रंग का गमछा सिर पर बांधे हुए हैं। उक्त व्यक्ति जिस किसी सज्जन को मिले एवं इसके संबंध में जानकारी हो तो तत्काल थाना GRP छिंदवाड़ा के दूरभाष क्रमांक 7587619602 या 7049151046 पर तत्काल सूचित करने का कष्ट करें। नंबर एक बार फिर से सुनें,

7587619602, दूसरा नंबर है 7049151046। लोक संगीत की अंतिम प्रस्तुति में आइए आपको सुनवाते हैं उर्मिला पांडे की आवाज में ये दादरा।

और इसी लोकगीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में आइए आपको सुनवाते हैं सूरज फिल्म का नगमा, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। गीत हसरत जयपुरी के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में यह अगला गीत, संगीत एक बार फिर शंकर जयकिशन का है, गीत हसरत जयपुरी का है और फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: ये थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी फिल्म बेटी बेटे में। और श्रोताओं, फिल्म संगीत आगे भी जारी रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी से अपनी सेवा काल से जुड़े अनुभवों पर सेवानिवृत्त सहायक श्री राजेंद्र कुमार दुबे से अमोल शेंडे की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमोल शिंदे। 9 दशकों की इस प्रेरणादायक यात्रा में आकाशवाणी ने केवल सूचना, संगीत और संस्कृति का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि देश भर के श्रोताओं के साथ एक आत्मीय रिश्ता भी कायम किया है। इस लंबे सफर को सफल बनाने में कार्यक्रमों और प्रसारण के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था का भी अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी संस्थान की मजबूती उसके अनुशासन, कार्य संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित होती है। वर्षों तक पर्दे के पीछे रहकर अनेक कर्मचारियों ने अपनी निष्ठा और समर्पण से आकाशवाणी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, आकाशवाणी के प्रशासनिक अनुभाग में लेखक के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है। इन्होंने संस्था की कार्यप्रणाली, अनुशासन और बदलते दौर को बहुत करीब से देखा है और अनुभव किया है। राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, आज आप स्टूडियो में उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद दुबे है। मेरा आकाशवाणी से जुड़ाव लगभग 35 वर्ष पहले हुआ। उस समय मैंने CG2 पद पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। बचपन से ही रेडियो के प्रति एक विशेष आकर्षण था और जब आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का अवसर मिला तो यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात थी।
1: जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने आकाशवाणी में कितने वर्षों तक सेवाएं दी और उस दौरान आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या रही?
2: मैंने आकाशवाणी में लगभग 35 वर्षों तक सेवाएं दी। इस दौरान

0: मेरी मुख्य जिम्मेदारियों में प्रशासनिक कार्य, कार्यालय संचालन
1: जी,
0: कर्मचारियों के समन्वय, पत्राचार, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना शामिल था
1: जी।
0: हमारा प्रयास हमेशा यही रहता
1: जी
0: कि प्रसारण कार्य बिना किसी बाधा के नियमित रूप से चलता रहे।
1: बिल्कुल दुबे जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने आकाशवाणी में कार्य शुरू किया था उस समय का माहौल और कार्यप्रणाली कैसे हुआ करती थी?
0: जब मैंने आकाशवाणी में कार्य शुरू किया उस समय का माहौल बहुत अनुशासित और आत्मीय हुआ करता था
1: जी।
0: कार्य प्रणाली पूरी तरह मैनुअल थी, टाइपराइटर पर पत्र तैयार होते थे
1: जी।
0: फाइलों का रखरखाव हाथों से किया जाता था और हर कार्य में धैर्य एवं सावधानी की आवश्यकता होती थी
1: जी।
0: तकनीकी संसाधन सीमित थे लेकिन कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण बहुत मजबूत था
1: जी। बिल्कुल दुबे जी, कार्यक्रम में भी बढ़ते हैं आगे, मुझे आपसे और चीजें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अभी आप मुझे बताइए, प्रशासनिक अनुभव किसी भी संस्थान की रीढ़ माना जाता है, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रशासनिक अनुभव किसी भी संस्थान की रीढ़ होता है और आकाशवाणी में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों, तकनीकी अनुभाग और कार्यक्रम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है
1: जी।
0: यदि प्रशासन मजबूत हो तो संस्थान का पूरा संचालन व्यवस्थित रूप से चलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, पुराने समय में ऑफिस मैनेजमेंट और पेपर वर्क किस तरह संभाला जाता था?
0: पुराने समय में ऑफिस मैनेजमेंट और पेपर वर्क पूरी तरह फाइलों और रजिस्टरों पर आधारित था। हर दस्तावेज का रिकॉर्ड बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा जाता था, पत्राचार डाक के माध्यम से होता था और छोटी सी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, लेकिन कार्य की गंभीरता और जिम्मेदारी बहुत अधिक होती थी।
1: मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो बहुत लंबे समय तक आकाशवाणी सेवाएं दी है, स्टाफ का कोऑर्डिनेशन और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल कैसे बनाया जाता था उस दौर में?
0: स्टाफ कोऑर्डिनेशन उस समय आपसी विश्वास और संवाद के आधार पर चलता था। सभी विभागों के कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते थे, चाहे कार्यक्रम विभाग हो, तकनीकी विभाग हो या प्रशासन, सभी का उद्देश्य आकाशवाणी को बेहतर बनाना था। इस कारण एक मजबूत टीम भावना बनी रहती थी।
1: दुबे जी, मुझे अभी ये बताइए, आप अपने कार्यकाल की कोई ऐसी याद या घटना जो आज भी आपको विशेष रूप से याद हो?
0: अपने कार्यकाल की कई यादें आज भी मेरे मन में ताजी हैं
1: जी।
0: विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रमों, विशेष प्रसारणों और आपातकालीन जैसे कोरोना जैसी महामारी आई थी
1: जी,
0: ऐसी परिस्थितियों में पूरी टीम का एक साथ काम करना आज भी याद आता है। उन क्षणों में महसूस होता था कि हम केवल नौकरी नहीं कर रहे बल्कि देश की सेवा का हिस्सा है।
1: क्योंकि आपने बहुत वर्षों पहले आकाशवाणी ज्वाइन किया था और आपकी सेवाएं भी बहुत लंबी रही है आकाशवाणी में, आपने आकाशवाणी में समय के साथ साथ कौन कौन से बड़े बदलाव देखे हैं?
0: समय के साथ आकाशवाणी में अनेक बड़े बदलाव आए। पहले जहां सभी कार्य मैनुअल होते थे, वहीं अब अधिकांश कार्य डिजिटल और तकनीक आधारित हो गए हैं। रिकॉर्डिंग, संपादन, कार्यालय प्रबंधन और संचार के तरीकों में आधुनिकता आई है, जिससे कार्य तेज और अधिक सुविधाजनक हुआ है।
1: मुझे अभी आपसे ये भी जानने की जिज्ञासा है, पहले और आज की कार्य संस्कृति में आपको क्या अंतर दिखाई देता है?
0: पहले और आज की कार्य संस्कृति में काफी अंतर दिखाई देता है। पहले कर्मचारियों के बीच आत्मीयता, धैर्य और पारिवारिक माहौल अधिक था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे। आज कार्य की गति तेज हुई है और तकनीक ने काम को आसान बनाया है, लेकिन मानवीय जुड़ाव पहले की तुलना में कुछ कम महसूस होता है।
1: अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, पहले कर्मचारियों के बीच ज्यादा आत्मीयता और पारिवारिक माहौल होता था आज की अपेक्षा?
0: हाँ, मुझे लगता है पहले कर्मचारियों के बीच अधिक आत्मीयता और अपनापन था। हम सभी एक परिवार की तरह कार्य करते थे। वरिष्ठ कर्मचारियों से सीखने का अवसर मिलता था
1: जी।
0: और नए कर्मचारियों को भी पूरा सहयोग दिया जाता था।
1: वर्ष 2026 में हम आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है जी?
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और भावुकता का विषय है। यह केवल एक संस्थान नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विरासत का महत्वपूर्ण माध्यम रहा
1: जी।
0: इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों में बने रहना इसकी विश्वसनीयता और जन सरोकारों का प्रमाण है।
1: आपके अनुसार आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है?
0: मेरे अनुसार आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत इसकी विश्वसनीयता, विविधता और जनसंपर्क रहा है
1: जी। इतने वर्षों तक आकाशवाणी ने लोगों के दिलों में बने रहने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं?
0: आकाशवाणी ने गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग के लोगों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया है। यही कारण है कि आज के लोग इसे विश्वास के साथ सुनते हैं।
1: अभी हम कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं, मुझे अभी आपसे जानना है, प्रशासनिक स्तर पर, चूंकि आप प्रशासनिक अनुभाग से जुड़े थे।

0: प्रशासनिक स्तर पर आकाशवाणी को मजबूत बनाने में कर्मचारियों की क्या भूमिका रही है?
1: प्रशासनिक स्तर पर आकाशवाणी को मजबूत बनाने में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रत्येक कर्मचारी ने अपने दायित्व को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया, तभी संस्थान इतने वर्षों तक सफलता के साथ आगे बढ़ पाया।
0: यदि आपको आकाशवाणी को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो आप आकाशवाणी के बारे में क्या कहेंगे?
1: यदि मुझे आकाशवाणी एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो मैं कहूंगा, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं बल्कि देश की आवाज और जनता की भावनाओं का सशक्त माध्यम है।
0: जी दुबे जी, जाते जाते आप मुझे ये बताइए, सेवानिवृत्ति के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आकाशवाणी से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराती है?
1: सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक गर्व इस बात का होता है कि मुझे आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनने और उसकी सेवा करने का अवसर मिला। यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
0: जी तो श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा केवल प्रसारण तक सीमित नहीं रही बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक तकनीकी विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का समर्पण अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे अतिथि श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे जी ने अपने अनुभवों और यादों के माध्यम से हमें आकाशवाणी की कार्य संस्कृति, आत्मीय वातावरण महत्वपूर्ण बातें बताई। निश्चित रूप से उनकी बातें हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रही होंगी। दुबे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आकाशवाणी स्टूडियोज में आज उपस्थित रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं तक साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी में अपनी सेवा काल से जुड़े अनुभवों पर सेवानिवृत्त सहायक श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे से अमोल शेंडे की बातचीत। और श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं फिल्म संगीत से और आपको सुनवाते हैं नूर महल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर

0: कितना डालना है।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UGC लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए UGC लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशील देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगरमालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ

बात ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस चौपाल में। किसान भाइयों, इस समय तो आज अगर हम बात करें तो बारिश हो गई है, तो थोड़ी सी ठंडक है और काफ़ी राहत भी मिली है गर्मियों से। और आप अगर लेकिन इस समय चाहें तो अपने खेतों में अंतिम जुताई कर सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो 12 से 15 जून तक मानसून आने की संभावना जताई गई है। आप इस समय अपने खेत में गोबर खाद दे सकते हैं और खाद का उठाव करके आप रख लें, सोसाइटियों में खाद उपलब्ध है। किसान भाइयों, आप अपने बीजों का अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं। इस समय आप ये करें कि 100 दाने लेकर अंकुरण परीक्षण करें, 70% अंकुरण होने पर ही आप उसे बुआई के लिए आगे प्रयोग करना है आपको। और बुआई भी है जल्दी ना करें, ना ही इधर उधर की बातों पर ध्यान दें। 15 जून तक मानसून आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो जब तक पर्याप्त बारिश ना हो बोनी ना करें। किसान भाइयों, आज बात होगी प्लांट टिश्यू कल्चर पर। चर्चा में जानेंगे पशुओं में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हर्बल जड़ी बूटियों के प्रयोग को। और चर्चा का एक और हिस्सा होगा हमारा आज, उसमें हम चर्चा करेंगे खेत बचाओ अभियान के बारे में। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में प्रगतिशील किसान संजय गुप्ता जी से हम भेंट करेंगे। उनसे चर्चा होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों पर एक किसान के तौर पर उनकी कृषि में रेडियो के महत्व पर। मनोरंजन भी होगा जिसमें हम भजन और लोकगीत सुनेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज की चौपाल शुरू करते हैं हम फतेह सिंह परमार राही के गाए हुए इस शिव भजन के साथ।

किसान भैया फतेह सिंह परमार राही के इस शिव भजन के बाद चलिए अब हम करते हैं आपसे आज की बात, और आज की बात का विषय है प्लांट टिश्यू कल्चर। किसान भैया प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप ऊतक संवर्धन एक वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से या कोशिका या जिसे हम ऊतक कह लें, इसको एक नियंत्रित रोगाणु रहित वातावरण और पोषक माध्यम में उगाकर हजारों की संख्या में नए और बिल्कुल मूल पौधे जैसे क्लोन की तरह तैयार किए जाते हैं। इसमें बहुत ही कम अवधि में पौधे की कई प्रतियां उत्पन्न करने के लिए पौधे के कुछ हिस्से का उपयोग होता है, यानी पौधे के किसी हिस्से से किसी भी सेल का उपयोग करके एक नया पौधा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों प्लांट टिश्यू कल्चर के विभिन्न प्रकार हैं, बीज कल्चर, कॉलस कल्चर, अंग कल्चर और प्रोटोस्लॉट कल्चर। किसान भाइयों संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों को एक एक्सप्लांट्स के रूप में जाना जाता है। अन्वेषकों को एक पोषक माध्यम पर इन विक्ट्रो में संवर्धित किया जाता है। इसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पोषक माध्यम को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने चाहिए। किसान भैया प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग हजारों अनुवांशिक रूप से समान पौधों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे सोमा क्लोन्स के रूप में जाना जाता है, और इस प्रक्रिया को माइक्रोपेजेशन के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग रोगग्रस्त पौधों से रोगमुक्त पौधों को विकसित करने के लिए उनकी विभाजकों यानी शीर्ष और कक्षीय का एक्सप्लांट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस विधि का व्यापक रूप से आप टमाटर, केला, सेब जैसे खाद्य पौधों सहित व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों दुर्लभ या लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए टिश्यू कल्चर का अनुप्रयोग किया जाता है। इस पद्धति से कृत्रिम बीजों का बड़े पैमाने पर

उत्पादन किया जाता है। किसान भाइयों, प्लांट टिश्यू कल्चर में मेरी स्टेम टिप कल्चर जैसी कुछ तकनीकों का उपयोग गन्ना, आलू और नरम फलों की कई प्रजातियों जैसे वायरस वाले स्टॉक से स्वच्छ पौधों की सामग्री का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, प्लांट टिश्यू कल्चर की तकनीक रोगाणु रहित वातावरण में प्रयोग की जाती है। इससे पौधे रोगमुक्त होते हैं, पौधे हानिकारक वायरस और अन्य बीमारियों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। किसान भाइयों, प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक में सामान्य बीजों की तुलना में पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों ही में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, सभी पौधे इस विधि से जो तैयार होते हैं, सभी पौधे इसमें आकार, रूप, उत्पादन में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। प्रयोगशाला में मौसम का नियंत्रण होने के कारण बेमौसम या किसी भी मौसम में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक में दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण भी होता है, यानी जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते या जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें इस तकनीक से आसानी से बचाया और बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रोग रहित अच्छे पौधों के विकास के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात प्लांट टिश्यू कल्चर पर। चलिए किसान भाइयों, अब पुनः एक बार हम मनोरंजन से जुड़ते हैं और आपको सुनाते हैं प्रकाश यादव व साथियों के स्वर में ये स्वांग।

0: श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आकाशवाणी अपनी स्थापना के बाद से ही सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कृषि क्षेत्र में खेतीबाड़ी की जानकारी हो या नवाचार के नए तरीके या फिर नवीनतम फसलों की जानकारी हो, किसान भाइयों के लिए आकाशवाणी से प्रसारित किसानवाणी या चौपाल जैसे कार्यक्रम किसान भाइयों को इन जानकारियों तक को किसान भाइयों तक पहुँचाने में हमेशा सफल रहे हैं और पहुंचाते रहे हैं। किसान भाइयों को मौसम संबंधी जानकारी देकर, मंडी भाव की जानकारियों से अवगत करवाकर किसान भाइयों को जागरूक करने का दायित्व आकाशवाणी ने बहुत ही अच्छे से निभाया है। आकाशवाणी का सफर हमेशा यूं ही जारी रहे और आपका साथ यूं ही बना रहे। आकाशवाणी के 90 वर्षों में जो इस साल पूरे होने जा रहे हैं, हम यही कामना करते हैं। और किसान भाइयों, इसी विषय पर आज आपकी हम एक भेंट प्रगतिशील किसान से करा रहे हैं। आज के मेहमान क्रम में ये प्रगतिशील किसान है संजय गुप्ता जी, जो कि चंदन गांव में जिनका कृषि फार्म है, उनसे चर्चा होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों पर एक किसान के तौर पर उनकी कृषि में रेडियो के महत्व पर। तो चलिए किसान भाइयों, जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। आज के मेहमान क्रम में हम एक किसान भाई से आपकी भेंट करवा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं संजय कुमार गुप्ता
0: जी। कहाँ पर खेती आप?
1: मेरा भरतादेव रोड पे गुप्ता कृषि फार्म के नाम से है
0: जी, जी।
1: और मैं सन 2006 से जैविक खेती कर रहा हूँ।
0: किस तरह की उपज आप लेते हैं जैविक खेती में?
1: मैं सभी प्रकार की उपज है, अनाज है, दालें हैं, फल है, सभी प्रकार से मैं पैदा कर रहा हूँ। और अच्छा, अभी शुरू में तो मुझे जैविक खेती में भी उतना रिस्पांस नहीं मिला, पर आज हमारे यहाँ जो जैविक बाजार खुल गया है तो इसने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं और हमें अच्छा लाभ प्राप्त भी हो रहा है।
0: अच्छा, इस वर्ष आकाशवाणी के 90 वर्ष होने जा रहे हैं संजय गुप्ता जी, और सभी किसान भाई जो इसमें अपना कार्यक्रम, वैसे तो सभी सुनते हैं लेकिन किसानवाणी वो बड़े शौक से सुनते हैं और इस पे उनके पत्र आते हैं, उनके फोन कॉल्स आते हैं, तो आप सुनते हैं रेडियो?
1: हाँ, मैं आकाशवाणी से किसानवाणी का कार्यक्रम सुनता हूँ और कई सालों से सुन रहा हूँ और अनेक प्रकार से लाभ भी प्राप्त किए हैं। हमेशा ही कई फसलों की जानकारी प्राप्त की, नई नई तकनीकी जानकारी प्राप्त की, इसमें हमेशा ही किसानों का बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। और जो वैज्ञानिकों का अनुभव रहते हैं वो भी मुझे प्राप्त होते हैं, जिसमें हेलो किसानवाणी का कार्यक्रम तो बहुत ही सराहनीय है। इसमें किसान भाई अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं एवं किसानों का अनुभव भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मुझे मौसम संबंधी जानकारी, मंडी भाव प्राप्त होते हैं। मैंने भी कई बार अपने अनुभव आकाशवाणी में बताने का मौका मिला है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के हिसाब से स्वयं का बीज, देसी बीज और स्वयं के खेती में लगने वाले संसाधनों का को बनाने की कोशिश करना चाहिए एवं लागत को कम करते हुए अपनी आय बढ़ाने के लिए का भी प्रयत्न करना जरूरी है।

0: अलावा मैं आकाशवाणी के प्रारंभ हुए जो 90 साल इस साल पूर्ण हो रहे हैं उसके लिए भी आकाशवाणी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसका सफर इतना सफलतापूर्ण रहा इसके लिए मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज़ को सुनकर लाभ भी प्राप्त किया है, एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आकाशवाणी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो हमेशा ही किसानों की आय बढ़ाने हेतु चिंतन करते रहते हैं।
1: अच्छा गुप्ता जी, रेडियो आप इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो किस तरह की खुशी मिलती है आपको रेडियो सुनने?
0: बहुत अच्छा लगता है, और इसके अलावा भी मैं और भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो जो कभी कभी जो गाने सुनने में आते हैं तो वो मुझे मेरी पुरानी याद ताज़ा कर देते हैं, और किसानवाणी में जो लोकगीत और अन्य गीत वगैरह आते हैं उससे भी मेरे को एक बहुत आनंद आता है और मैं बहुत रुचि से सुनता हूँ। और हमें नई नई तकनीकों की जानकारी विशेषज्ञों के अनुभव भी मिलते हैं और हम उस चीज़ का लाभ प्राप्त करके और अपना बढ़िया खेतीबाड़ी अच्छे से चला रहे हैं, और हमारी कृषि में उन्नति के लिए आकाशवाणी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आकाशवाणी को एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: तो संजय गुप्ता जी, आपने हमसे बातचीत की और आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो किसान भाई, ये थे प्रगतिशील किसान संजय गुप्ता जी जो आकाशवाणी के 90 वर्ष जो इस साल होने जा रहे हैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। चलिए किसान भाई, पुनः मनोरंजन से जुड़ते हैं और सुनते हैं ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिसे गाया है ममता चंद्राकर ने।

किसानों की ममता चंद्राकर के छत्तीसगढ़ी लोकगीत के बाद चलिए अब हम करते हैं आपसे आज की चर्चा, जिसका विषय है पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हर्बल जड़ी बूटियों का प्रयोग। किसानों ने पशुओं के छोटे बड़े सभी रोगों के लिए पशुपालक किसान भाई प्राचीन काल से ही हर्बल जड़ी बूटियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। गर्मियों में जब तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तब पशुओं की शारीरिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तेज गर्मियों में पशुओं को अपच, चारा खाने में रुचि, दूध उत्पादन में कमी, प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है। तेज धूप के कारण पशुओं में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसे में पर्याप्त पानी ना मिलने से पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। गर्मियों में लू चलने के कारण पशु ताप घात यानी हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। किसान भाइयों, पशुओं को छायादार और हवादार स्थानों पर इस समय हमें बांधना चाहिए। पशुओं को पीने के लिए साफ स्वच्छ जल, ताजा जल पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए दिया जाना चाहिए। पशुओं को प्रतिदिन 1 से 2 बार जरूर नहलाएं। यदि उपलब्ध हो सके तो हरा चारा नियमित रूप से पशुओं को दें। हरा चारा पौष्टिक भी होता है और इनमें पानी की पूर्ति भी पशु के लिए होती है। आप साइलेज बना के रख सकते हैं जो इस समय काम आता है जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती। किसान भाई, पशुओं को पशु आहार सुबह और शाम के समय ही दिया जाना चाहिए। ज़्यादा खिलाने के बजाय पशुओं को आप संतुलित आहार दें और पशु आहार में नमक और मिनरल मिक्सचर जरूर शामिल करें। किसान भाइयों, रिसर्च में सामने आया है कि हर्बल जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से पाचन क्षमता, शारीरिक भार, उत्पादकता और प्रजनन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां मिलाने पर पौष्टिकता में वृद्धि होने से न केवल पशु आहार अधिक खाने लगता है पशु, बल्कि पशु आहार का पाचन भी अच्छे से होता है। साथ ही पोषक पदार्थों के साथ खनिज लवणों के अवशोषण में भी वृद्धि होती है। हर्ब्स के प्रयोग से गर्मियों में पशु हीट स्ट्रोक से भी बचा रहता है। खास बात यह है कि ज़्यादातर हर्ब्स की कुल पशु आहार का केवल 0.5 से 50% मात्रा हर्ब्स के अनुसार ही मिलानी होती है। हर्ब्स में पॉलीफिनोलिक यौगिक पाए जाते हैं। हर्ब्स में एल्कोलाइट, टैनिन, खनिज लवण, कार्बनिक अम्ल, एस्कॉर्बिन अम्ल और एमिनो अम्ल वगैरह अलग अलग संघटक पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाली फिनोलिक यौगिक न केवल एंटीऑक्सीडेंट सक्रियता में योगदान देते हैं बल्कि पशुओं को हीट स्ट्रोक यानी ताप घात से लड़ने में भी सहायता प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में आंवला, नींबू, तुलसी, पुदीना और कच्ची प्याज और बेलपत्र के फलों का प्रयोग करने से भी ताप घात के प्रयोग से बचाव होता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। चलिए अब पुनः मनोरंजन से जुड़ते हैं, सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान भाइयों, अभी आपने ये लोकगीत जो सुना उसमें स्वर था उर्मिला पांडे का। अब आज की चर्चा का दूसरा हिस्सा, किसान भाइयों आज की चर्चा का जो दूसरा हिस्सा है वो है खेत बचाओ अभियान पर। किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान की आज शुरुआत की गई। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत को सुधार कर कृषि भूमि की रक्षा करना है, साथ ही अत्यधिक रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकना भी है। साथ ही यह अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी चलाया जाएगा। और किसान भाइयों को नकली खाद, नकली बीज की पहचान करना भी इस अभियान में सिखाया जाएगा और किसानों को नकली खाद बीज लेने से होने वाले नुकसान से भी किसान भाइयों को परिचित इससे कराया जाएगा ताकि वो नकली खाद और बीज ना लें। किसान भाइयों, भारत सरकार ने इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे माह कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसान भाइयों को संतुलित खाद के उपयोग, नकली पेस्टिसाइड की पहचान और वैज्ञानिक खेती की जानकारी किसान भाइयों को इस अभियान के अंतर्गत देंगे। इस अभियान के तहत देश के हर हिस्से में खेती के दौरान संतुलित उर्वरक का प्रयोग, प्रकृति खेती और नकली खाद बीज के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक विस्तृत

रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस राष्ट्रीय अभियान को जन भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। किसान भाइयों, इस अभियान में किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, फसल चयन, जल संरक्षण, जल धारण क्षमता बढ़ाने के उपाय, हरी खाद के प्रयोग, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियों और नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड की सही पहचान और उनकी सही मात्रा के प्रयोग जैसे विषयों पर जागरूक करने का निर्णय लिया है। और यह अभियान किसान भाइयों को इन चीज़ों को लेकर जागरूक करेगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि धरती माँ को बचाने, खेती का भविष्य सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों को उनकी अधिकारियों को उनके अधिकारों की रक्षा करने का राष्ट्रीय अभियान है। उनका कहना है कि बढ़ता तापमान, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और जल संकट हमारी खेती के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं, इसलिए समय रहते व्यापक जागरूकता और व्यवहारिक हस्तक्षेप जरूरी है। संतुलित एकीकृत और जैविक स्रोतों के उपयोग से, इसके प्रयोग से उत्पादन बढ़ेगा, मिट्टी स्वस्थ बनेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। 13 मई 2026 तक 6.16 लाख से अधिक किसान विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए हैं। अब तक 10,863 जागरूकता शिविर और संगोष्ठियां और एक्सपोजर विजिट की जा चुकी हैं। वहीं 2,882 प्रशिक्षण कार्यक्रम इस अभियान से जुड़े हैं जो आयोजित किए गए हैं। 99,540 प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस अभियान के अंतर्गत 12 मई 2026 तक संतुलित उर्वरकों के उपयोग के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान को भी चलाया गया है, जिसमें 5.97 लाख से अधिक किसानों तक इस कार्यक्रमों को पहुंचाया गया है। किसान भाइयों, आइए 1 जून से 30 जून 2026 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का हम सभी किसान भाई हिस्सा बने और इसे सफल बनाएं। खेत बचाओ अभियान के तहत जितने भी कार्यक्रम, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे आसपास चलाए जा रहे हैं या हमारे ग्रामों में चलाए जा रहे हैं या हमारे विकास खंडों में चलाए जा रहे हैं, तो उन सब में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसे सफल बनाएं, अपनी मिट्टी की सेहत के को बचाने के उपायों को अपनाएं और अपनी खेती बाड़ी को हम उत्पादकता बढ़ाकर आत्मनिर्भर कृषक बने। तो ये थी हमारी आज की बात, आज की चर्चा खेत बचाओ अभियान पर। चलिए किसान भाइयों, पुनः मनोरंजन से जुड़ते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान भाइयों, सुदर्शन तिवारी और साथियों के स्वर में गाए हुए इस लोक भजन के साथ ही अब आज की चौपाल यहीं संपन्न होती है। तो मैं रजनीश भैया कहता हूं आपको राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे उनका अपना प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है अब कार्यक्रम आपकी पसंद।

रात के 8 बजे हैं और हम लेकर मौजूद हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, आपकी पसंद और आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए आज मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त मनोज ठांडेकर आपके साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आकाशवाणी इस वर्ष अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका 90 वर्षों का ये निरंतर साथ हमें आज इस मकाम तक लाया है। रेडियो जो एक ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ और समय के साथ साथ रेडियो का अस्तित्व भी बदलता गया और आज मोबाइल ऐप तक हम पहुंच गए हैं, और ये सब संभव हो पाया है हमारे सुनने वालों की वजह से। जी हाँ, आकाशवाणी मनोरंजन के साथ साथ आपको जानकारी देता रहा है और आगे भी आपके जज्बातों को ध्यान में रखकर आपकी हर फरमाइश पूरी करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। और दोस्तों, ये गीत हमने लिया है फिल्म जानी दुश्मन से, जिसे गाया है किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोताओं ने। राम मंदिर के पास परासिया से हमारे नियमित श्रोता है भाई देवेंद्र बख्शी, मुफ्ती भाई, राजू यदुवंशी, वसंत वर्मा, शकुन साहू, उमेश तलत। VTC छिंदवाड़ा से है प्रमीला यादव जी। तारनगर छिंदवाड़ा से है गफार बाबू, रुखसाना बेगम, आयरा इनाया, राहुल पाल, फूल सिंह मक्कड़, रमेश विश्वकर्मा, हरेश विश्वकर्मा। नॉर्थ चंदमेटा से है साथ में मोहम्मद अशफाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक, हुमा शायमा जी। आदिवाड़ा ब्लॉक तानिया छिंदवाड़ा के हमारे ये नियमित श्रोता है देवराम इनवाती, दामिनी इनवाती जी। स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से आप है निसार खान, उमेश गुप्ता, रफीक खान, सुरेश हरडे, जतन नायक जी। जामई रोड चांदामेटा छिंदवाड़ा से हैं सादिया खान, जारा, आइला, आलिया, आलिशा, चांदनी व साखिया जी। न्यूटन से ही हैं चिखली नंबर 11 के हमारे नियमित श्रोता देवी शंकर गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता, रोहन गुप्ता, देवेश, पप्पू, अर्पिता गुप्ता, प्रिया और साथ में है मुनिया, हरिराज साहू, श्रीमती तारा साहू, पायल, गगन साहू, चंद प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूवी साहू, मास्टर वेदांश साहू, वैष्णवी साहू, सलीम अंसारी, भवानी साहू, पप्पू साहू जी। आप सभी हैं पिपरिया रोड नंबर न्यूटन वार्ड नंबर 1 से। ये अगले फरमाइश करता है राम गोपाल भैया, रामू भैया, राम भैया और गोपाल भैया। आप सभी भाई साहब को हमारी राम राम। इतने सुंदर सुंदर नाम है, राम गोपाल, रामू, राम गोपाल। आप सभी हैं डॉक्टर राधा कृष्ण वार्ड नंबर 1 परतला से। मोहनलाल देवानंद।

रेखा देवांगन, कुमारी अर्चना देवांगन, रुखसाना बेगम, अब्दुल गफ्फार, विवेक बंदेवार जी, आप सभी हैं जाटा छापर चौकी लाइन छिंदवाड़ा से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं जानी दुश्मन फिल्म का ये नगमा।

अगले गीत की फरमाइश के लिए हमें ये संदेश मिले हैं। आप है पुराना नागपुर नाका छिंदवाड़ा के हमारे निमी श्रोता अनिल मालोनिया, श्रीमती माया, सुनीता, प्रतिभा एवं अंशिका, आयुष, मोहित मालोनिया तथा ज्योति विनोद चौरसिया, भवन पवार, श्रीमती मीना राशि, शुभम चौकशे, पुराना नागपुर नाका छिंदवाड़ा से। और ये अगला व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है भमोड़ी कॉलरी के, ये हमारे श्रोता है इसरीलाल वर्मा जेम्स, तक्षिका शाइनी वर्मा जेम्स, जय वर्मा जेम्स, यश महिमा वर्मा, श्रद्धा शांति सुमन वर्मा, एम जख्मी, एम रोशनी, मास्टर श्री वर्मा, और उदयबान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, शिखा, नीलिमा चंद्रभागा, ग्रंथ और गौरी ठाकरे जी, आप सभी हैं छिंदवाड़ा के हमारे नियमित श्रोता। सहदेव भोंडे, सरिता भोंडे, कुमारी श्रद्धा, अभय वासु भोंडे, बलराम, सरिता, दिशा, अभिजीत, सोनू, दद्दू भोंडे, ओम प्रकाश, किरण डहरिया, आप सभी हैं ढाला वार्ड नंबर एक पोस्ट दिखावानी से। संजय हल्दिया, समीर हल्दिया, सोनिया हल्दिया, किरण हल्दिया, आप सभी हैं चांदामेटा से। पंचशील नगर छिंदवाड़ा के हमारे ये श्रोता है आयांश, तनुष, मोहित, लखन सिंह जी, अनीता वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना, अंकेश, अनुवेश, ऋतिक, अंकु और सिंकी वाघ जी, आप सभी हैं न्यूटन पोस्ट ऑफ न्यूटन चिकली पोस्ट ऑफिस के पास से। ग्राम मानिया खापा के हमारे ये श्रोता है बंटी प्रजापति, निर्मल प्रजापति, भगवान दीन प्रजापति, आरव, कुमकुम, काव्या, कृष्णा प्रजापति, भवानी प्रजापति जी, मेरी जुली पसंद है सुनील डहरिया, अर्चना डहरिया, संजना डहरिया, सलोनी धीरज, शालिनी डहरिया, साथ में है पूसूलाल बघेल, उषा बघेल, नित्या, अरविंद, अंजलि बघेल जी, आप सभी हैं मानिया खापा से। ये नियमित श्रोता हैं हमारे सतीश रघुवंशी जी, राज रघुवंशी, शिवम सत्यम साहू, रामकृष्ण वर्सकुले, सखाराम साहू, वीरपाल यादव, आप सभी हैं बम्ही लाला पोस्ट परसोली से। और वर्कशॉप लाइन चांदामेटा के हमारे ये श्रोता है सरोज पथरोले वासाथी। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार व साथियों ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है राजेश रोशन।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपने रेडियो दोस्त मनोज टांडेकर के साथ। और दोस्तों, कार्यक्रम का अगले गीत के लिए हम ये व्हाट्सएप संदेश शामिल करते हैं। भेजने वाले हैं खंडवा से हैं आप अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर और राजन कटारे जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी और पायल। तुमड़ी हनुमान मंदिर के पास से आप हैं पोस्ट उड़धन तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा से सोनम नागवंशी, मयंक नागवंशी, महेश, सुनीता, प्रफुल्ल, डॉली नागवंशी जी। जिला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के हमारे ये श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी, जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज शिवांगी धाकड़ जी। आप सभी हैं आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। और ये कमल बालूजा, मधु सागर, आप सभी हैं सतना मध्य प्रदेश से। साथ में हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक जी। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण प्रतीक जी, आप सभी हैं बिलाड़ा राजस्थान से। आर्यनगर कोहका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुषी जंघेल और नंदिनी जी। सुरखरी कला से आप हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और साथीगण। जिला खरगोन सनावत के हमारे ये श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आ

आयुषी रामचंद्र शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और आदलपुरा गोगांवा से हैं संजय बामनिया जी। महादेव घाट अमलेश्वर के हमारे नियमित श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर जी, बेबी शालिया डाबर, बेबी हामिया, बेबी जिकरा और आयशा खत्री जी, आप सभी हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा जी, आप सभी हैं भाटा पारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। और आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

0: चल चल चल चल चल दरिया में।
1: कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए ये संदेश हम शामिल करते हैं। अनिल कुमार, अंजुम लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव जी, आप हैं शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव जी। ग्राम पथरिया से आप हैं नरेन नेताम, कुसुम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कृष्ट नेताम जी। औरंगाबाद के हमारे ये श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश जी। बाजार भारा बेमेतरा से आप हैं भरत लाल सिन्हा और लव कुमार लक्की सिन्हा जी। दतरंगी के हमारे ये श्रोता है भागवत वर्मा जी और जरूर वरूर महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, पुणे से हैं पंकज बाड़ोदे और आर्या आदि जी। बिरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर जी। गांधी चौक चौपड़ पंजाब से हैं हरदेव, बलविंदर, जयदेव और मिक्का जी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप जी। बेरेडी से हैं राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवारे जी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी के ही हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा जी। और मिली जुली पसंद है हमारे इन श्रोताओं की अभिजीत गवहाणकर, राही, श्रीमती सरिता, एकांश गवहाणकर जी। आप सभी हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से। बहादुरपुरा नागपुर के हैं हमारे वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर जी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटईस के हमारे श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा जी। तो आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं नगीना फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने।

तो ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। रात के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए, पेश है एल्बम गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आइए आपको सुनवाते हैं रेशमा की आवाज में ये पंजाबी गीत।

ये गीत है अभिजीत की आवाज में। गीत नुसरत बद्र का है और संगीत सप्तऋषि का है।

0: और इसी गीत के साथ खत्म होता है एल्बम गीत। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा

किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

लागू भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है क्योंकि बहुत सारे वाटर बोन डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है बल्कि बहुत सारे मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है क्योंकि उसके पास वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डिफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डिफिकेशन का वो करीब एकदम वैनिश हो गया और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में। बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubham. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubham also mentioned about, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, it again revolutionized, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
0: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of कटिंग एज हेल्थ सर्विस

0: big thing. Remember, we are talking about one a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged. Yes.
1: राइट राइट शुभमय देती अभी शुभमय ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000+ करोड़ लोन अभी तक डिस्बर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. इम्पॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस फंड को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ यह किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है. वैसे दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस बड़ा महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फॉर लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए. जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को

0: आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को, उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इसमें ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDTalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: 10 साल पूरे होने पर विषय द्विवार्षिक कार्यक्रम विषय मेगाहर्ट्ज पर रात के 8:35 हुए हैं।
1: अभिनेत्री की

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं, उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आईं, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगीं। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

0: पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक सा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

बहाने इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने

0: के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी
1: इन द रीजन। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत

0: आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN Nair ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Minong Lian at Rashtrapati Bhavan.

0: 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squalls conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।